0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: अज्ञान, माना हुआ अज्ञान, फैला लो जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने ही तो अज्ञान फैलता चला जाता है। अभी विदेश में आपका कोई और वहां पधारे अमेरिका में, तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध, संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान, कर्म भी अज्ञान से ही तो हो रहा है, सारा का सारा खेल अज्ञान। भगवान का भजन करो, अज्ञान नष्ट हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जाएगा, दूसरे के मरने का दुख चला जाएगा। अगर भजन करके अज्ञान को नष्ट नहीं किया तो दुख ही दुख है, छोटी छोटी वस्तु के नष्ट होने में दुख है। एक गांव में पूरा परिवार बैठ के रो रहा था, बोले इनके एक भैंस थी, उसी दूध से काम चलता था, भैंस मर गई, पूरा परिवार वो ऐसे मानो उनके सर्वस्व नष्ट हो गया हो। अब गरीब आदमी उसी भैंस के दूध से काम चल रहा, क्या है? माना हुआ संबंध, अपने सुख की वासना से संबंध, अपने सुख की वासना का नाश, तो मानो मेरा नाश। अब वो हाय हाय कर रहा, अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का अंश अपने स्वरूप को न जानने के कारण छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी व्यक्ति, छोटे छोटे पदार्थ, किसी क्रीड़ा में पराजित हो गया, शरीर को नष्ट कर दिया। एक किसान की फसल नष्ट हो गई, शरीर नष्ट कर दिया। कहीं फेल हो गया, वो शरीर नष्ट कर, मतलब कहां मान्यताएं हैं, मान्यताएं कहां है? अपने जीवन को कितना अमूल्य जीवन आप बना लेते हैं या कितना घटिया बना देते हैं, अज्ञान ही तो है। अज्ञान के कारण एक सेल्फी में अपने प्राण दे रहे हैं लोग। हमारा अज्ञान हमारा नाश कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमें चिंता में ले जा रहा है, उसी को दूर करना है। मस्ती अपने अंदर अपार है, और हम मस्ती अपने अंदर की नहीं, हम बाहर से मस्ती चाहते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर अपने अंदर की मस्ती जान जाओ ना प्यारे, तो कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख आप मोल ले रहे हैं, ना आपका ये शरीर आपका था, ना है और ना रहेगा। किसका प्रश्न था? आप देखिए, आपका शरीर पहले था क्या? पहले आप कितनी आयु है आपके शरीर की?
2: 52।
1: 52 वर्ष पहले शरीर नहीं था, और पता नहीं 52 मिनट, 52 सेकंड या 52 दिन या 52 महीने, कुछ पता नहीं कितने दिन टिकेगा ये, और ये है नहीं, रोज का रोज नष्ट हो रहा है। अब यही हमारा नहीं है तो फिर और कौन हमारा हो गया? जब यही हमारा नहीं, आपको विश्वास है कि आपका नहीं है? है ये आपका शरीर, आपका नहीं आपको पता है, लेकिन प्यार तो बहुत है इस शरीर से, एक अपनापन इतना जोर का है कि शीशा देखने पर लगता है मैं, नहीं लगता है भाई, यही दुख देता है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। और इसी से संबंधित पुत्र, पति, रिश्ते, नाते, कितने संबंध हैं, और ये सब मरण धर्मा है, ये भी पता है आपको? दिमाग में रख लो, ये हमारे कहां है, जैसे जानकारी करना है कि भाई आपका आया, इसका नाम है मृत्यु लोक, सब मरेंगे। और जिनसे आप अपनापन करना चाहिए उनसे शायद हुआ है कि नहीं, अगर उनसे हुआ होता तो जिनसे अपनापन किया है इनके बिछुड़ने पर आपको दुख नहीं होता। भगवान ने आदेश किया, जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अभी खत्म हो जाए रोना, दुख खत्म हो जाए, कुछ नहीं, किसके प्रति रोना? ऐसा खिलौने हैं हमारे, आपके जितने ढांचे हैं ये माया के खिलौने, बिगड़ेंगे। एक तरफ कुम्हार के बर्तन जैसे फूटते रहते हैं तो एक तरफ उसकी चाक चलती रहती है, और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं, तो सृष्टि, पालन और संघार, तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही हैं। कहीं जो है मंगल बधाइयां बज रही हैं, तो कहीं आंसुओं की झड़ी लगी है, वियोग मर गया है कोई, कहीं हाहाकार मचा हुआ है, तो कहीं नृत्य हो रहा है, तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती, देखो ना पूरे संसार का, और है कुछ नहीं, एक विशद फिल्म है, एक विशद बड़ी फिल्म है जीवन की, वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 80 वर्ष में, लेकिन टोटल झूठी फिल्म, झूठी होती ना। अच्छा, इस फिल्म में आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही विलियन है, आप ही पर्दा है, आप ही पूरी शूटिंग है, आप ही एक ही है और अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करके खेल रहा है और अपने आप को समेट लेता है। एक ही एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा एको हम, बड़ा विचित्र खेल है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, पर हमको अंदर से ज्ञान होता है झूठी है, इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पर इस फिल्म का ऐसा मतलब आकर्षण है कि ये झूठी नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। शास्त्र कह रहा और प्रायः सब लोग जानते हैं, जब गांव में शव यात्रा करते ना लेकर के, तो बोलते हैं जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूंकने तक के लिए जाओगे फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है क्योंकि हम जिस जिस से संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गए, कितना बढ़िया बात चल रही थी, बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे, अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था संबंधी, अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अभी लगेगा मुझे जाना चाहिए मेरा कोई। अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे यार इतने सत्संग में काय को विक्षेप डाल लो। अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध हम अविनाशी हैं, हमारा संबंध सीधे भगवान से है। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतासना, अब उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए, भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये खेल तो चल ही रहा है और हर सेकेंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। एक साल चला गया जिंदगी से, एक साल जिंदगी मतलब 12 महीना चले गए, 12 महीना, एक श्वास कितनी कीमती है वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेंगे। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया, अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले आती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपये काट लिए तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है? तो लोग बड़े मतवाले हैं, हम कह रहे मनाओ भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ, असत्य वस्तु में क्या। अब बोले आज पार्टी है, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो, मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भूंज के खान जाएंगे। अरे यार लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य ही को हो यार, हम सुअर कुत्ता तो ना बने, मुर्गा मुर्गी तो ना बने। तो बहुत अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई, हमारी प्रार्थना है नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर ले, पुलिस इकट्ठा कर ले, तो जो स्वप्न में पीट रहा है हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं, एकमात्र उपाय बचाने के उसे जगा दो, बस जे भी जगाया सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब सुवनिहारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, समझ गया तो रोला क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी, नहीं बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है।
2: डेढ़ साल से सत्संग सुन रही है आपका, मैं डेढ़ साल हो गए डिप्रेशन में जाते जाते मैं बच गई।
1: हाँ सत्संग बचा तो लेगा ही, सत्संग तो बचा लेगा, अगर धैर्य से सुनो तो आवागमन से बचा लेगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, सत्संग मात्र आपको आवागमन से बचा लेगा, अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो।
2: भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती, भोग नहीं लगा रही हूँ ढाई साल।
1: भगवान को भोग की जरूरत नहीं, वो पूरे विश्व को भोग पवा रहे, भगवान को जरूरत है आपके अपनेपन की, और उसके लिए हमें चाहिए स्मरण, सतत स्मरण। तो नाम जप करो, जितना आपसे बन सके नाम जप करो, नाम जप जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। सब दवाई एक है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके इस संसार चक्र से पार होने के लिए अमोघ औषधि, जासु नाम भव भेषज, खूब नाम जप करो, खूब देख लेना आप आनंदित हो जाएंगे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में, महिलाओं की सबसे

0: 9395 या 97 097 06 575।
1: सुबह सवेरे के बेला में स्वागत बार रुआ सबके आ दोस्त लोग हम है राउर दोस्त दीपाली ता स्वीकार करें सबसे पहले दीपाली की सुप्रभात प्रणाम। श्रोता लोग रुवते जानते बानी कि इस समय हा राउर स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल के जी में हम लेके आए नी रुआ सब खातिर बहुत सारा घरेलू नुस्खा जिकरा के अपना के रवा अपना स्वास्थ्य के और बेहतर कर सकता नी। तो चली आज के घरेलू नुस्खा के सिलसिला शुरू करी हम। तो दोस्त लोग सबसे पहले हम बताएं ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी अधिकतर नहर नाला तथा जलाशय के किनारे पावल जला। एकर गुण यह कि ब्राह्मी त्रिदोष नाशक हृदय के बल प्रदान करे वाला स्मृति और आयु वर्धक मूत्रल दिमाग के ताकत देवे वाला रसायन गुण युक्त विपाक में मधुर स्वाद में तिक्त कसैली तथा शीतल होला। इसे स्नायु तंत्र खातिर टॉनिक मानल गईल बा। ई मस्तिष्क के उत्तेजना के शांत करेला स्नायु कोष के पोषण करेला रक्तचाप के सामान्य स्तर पर लावेला बढ़ल रक्तचाप के घटावेला अनिद्रा दूर करेला और स्मरण शक्ति बढ़ावेला। संक्षेप में एकर तीन प्रमुख गुण होला एक तो बुद्धि परिष्कारक आयुर्वर्धक और स्वर माधुर्य कारक। यूनानी मत के अनुसार ई अम्ल और यादास्त के बढ़ावेला एकर सेवन करे वाला लोग दीर्घ आयु होला। ई दिल दिमाग और जिगर के ताकत देवेला ज्यादा दिमागी काम करे वाला लोग खातिर ई एगो वरदान की तरह होला। ब्राह्मी मूत्र के बीमारी दूर करेला एकर घी इस्तेमाल करे से उन्माद और अपस्मार मिटेला। इसे नजर तेज होला विशेषकर वृद्ध लोग के जेकर दिमाग कमजोर होके के कारण नजर भी कमजोर हो गई होके उकरा और लाभ मिलेला। आई जानल जाओ मुलेठी से कौन कौन रोग से निजात पावल जा सकेला। उच्च रक्तचाप होके पे ब्राह्मी के पत्ता के स्वरस एक चम्मच और शहद आधा चम्मच मिला के लेवे से बढ़ल होकल रक्त के दबाव सामान्य हो जाला। एक अवस्था अनुसार दिन में 3-4 बार सेवन करें। यदि स्मृति कमजोर होके भूले के आदत होके और दिमाग कमजोर होके तब ब्राह्मी एवं बादाम के गिरी 60-60 ग्राम और काली मिर्च 20 ग्राम मिला के पीस ली। रोजाना एक एक चम्मच के मात्रा में दूध के साथ ही दिन में 2-3 बार सेवन करी। साथ ही ब्राह्मी तेल के मालिश सिर पर करी। अनिद्रा में ब्राह्मी और शंख पुष्टी के चूर्ण 2.5 ग्राम रोजाना मिला के सूते से 1 घंटा पहले सेवन करी। स्मरण शक्ति तेज करे खातिर 2.5 ग्राम ब्राह्मी के चूर्ण में 2-3 काली मिर्च पीस के दूध के साथ रोजाना प्रातः सांगे सेवन करे से यादाश्त की कमजोरी दूर होला। पागलपन मिर्गी और अपस्मार में कुछ सप्ताह लगातार सुबह शाम 2 चम्मच ब्राह्मी के रस में 1 चम्मच शहद मिला के सेवन करें। स्वस्थ और आवाज साफ करे खातिर ब्राह्मी मुनाका तुलसी पत्र सफेद इलायची लौंग इस सब के 10-10 ग्राम और शंख पुष्पी 5 ग्राम लेके अर्क तैयार करें। आधा चम्मच रोजाना सुबह शाम सेवन करें। ऐसे लाभ मिली।

0: आई जानल जाओ ब्राह्मी से निर्मित विशिष्ट औषधि के उपयोग। ब्राह्मी के काढ़ा बनावे खातिर 3 ग्राम ब्राह्मी, 3 ग्राम शंख पुष्पी और 2 ग्राम मिश्री के काढ़ा बना के दिन में 1-2 बार पिए से अवसाद और डर में पर्याप्त लाभ होला। ब्राह्मी चूर्ण बनावे खातिर ब्राह्मी 1 ग्राम, शंखा हुली 3 ग्राम, बादाम के गिरी 24 ग्राम, चारों मगज 9 ग्राम, त्रिफला 3 ग्राम, गोखरू 12 ग्राम, धनिया की गिरी 1 ग्राम तथा सौंठ 12 ग्राम। ये सब के चूर्ण बना के रोजाना 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ली। इसे आँख की रोशनी सुधरी और दिमाग के ताकत मिली। ब्राह्मी बर्टी बनावे खातिर मुलेठी 6 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 24 ग्राम, ब्राह्मी बूटी 24 ग्राम, शंखपुष्पी 4 ग्राम, बड़ी इलायची के बीज 24 ग्राम, केसर 12 ग्राम, सोना के वर्क 10, चांदी के वर्क 20। कस्तूरी 2 ग्राम, अबरक भस्म 6 ग्राम, मीठा बादाम के गिरी 5 ग्राम, ये सब के बारीक पीस के 2.5 मिलीग्राम की गोली शहद के द्वारा बनाई। रोजाना 1-3 गोली दूध के साथ लेवे से मस्तिष्क के कमजोरी, उन्माद, स्मृति दोष एवं जुकाम में पर्याप्त लाभ होला। ब्राह्मित घृत में बराबर वजन में ब्राह्मी के ताजा रस और देशी घी लेके सिद्ध करी। एक रोजाना 5 ग्राम यानी 1 चम्मच थोड़ा सा दूध के साथ लेवे से स्मृति में वृद्धि हुई। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात बनी शतावर के बारे में। स्वप्न दोष तथा प्रमेह आदि में शतावरी के चूर्ण तैयार करके उनमें उतना ही मात्रा में मिश्री पीस के मिलाई। रोजाना 5-10 ग्राम की मात्रा में एक दिन में 2 बार 5 ग्राम देशी घी में मिला के सेवन करे से ई रोग में लाभ होला। नपुंसकता होके पे शतावरी, सफेद मुलसी, गोखरू, कौच के बीज और असगंध के समान मात्रा में लेके बारीक चूर्ण बनाई। फिर 5-5 ग्राम के मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम दूध के साथ कुछ समय तक नियमित रूप से सेवन करें। हिस्टीरिया और मिर्गी होके पे कुछ महीना तक लगातार सुबह शाम शतावर के जड़ के रस 2 चम्मच यानी 10 ग्राम के मात्रा में दूध के साथ सेवन करते रहे से ये दोनों रोग में लाभ होला। प्रकोप, शरीर के तापमान सामान्य से कम रहे, मुंह में बार बार छाला, अल्सर होके रक्तस्राव, शरीर की दुर्बलता में 250 ग्राम दूध में शतावरी के 1 चम्मच चूर्ण और 2 चम्मच गाय के दूध से बनल घी डाल के सेवन करें। जेकर शरीर के वजन बढ़त होके उ लोग एही में से 1/2 चम्मच के मात्रा में अश्वगंधा और शहद समान मात्रा में मिला के सेवन करे तो लाभ हुई। तो दोस्त लोग, आई जानल जाओ शतावर के गुण के बारे में। शतावर स्वाद में कड़वा, मधुर व रसयुक्त होला, एके रसायन मानल जाला। शतावरी के प्रयोग से बल, वीर्य, बुद्धि तथा मेधा के विकास होला। एके प्रयोग से नेत्र ज्योति सुधरेला, दस्त, पेट के अल्सर, बवासीर और रक्त पित्त आदि रोग के निवारण में एकर प्रयोग होला। जे माता के स्तन में दूध की मात्रा कम होला 20 ग्राम शतावर के लेके मोटा कुटली आ फिर दूध और पानी 250-250 ग्राम मात्रा में लेके उसमें शतावर डाल के उबाली। जब पानी जल जाए और केवल दूध के मात्रा ही शेष रह जाए तो ओकरा के आग से नीचे उतार के उसमें इच्छा अनुसार पीसल होकल मिश्री डाल के सेवन करे से मात्रा बढ़ी। शिशु के दूध पिलावे से होके वाला कमजोरी या प्रसव के कारण अनुभव होके वाला कमजोरी भी दूर हुई। तो दोस्तों अब वो समय आ गई बा जिमे हम ले रउआ लोग से जाए के अनुमति। तो हंसते मुस्कुराते आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत आ रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
3: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात कुल धर्म धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
6: और 9097-6160-02।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब
9: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
11: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने बाढ़ को लेकर स्थिति का किया निरीक्षण, सदर SDO ने अंचल कार्यालयों का किया औचक जांच, हथियार तस्करी के मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कटान का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ इंजीनियर ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में मौसम को लेकर संभावित बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण रखने के हिसाब से आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने तटबंधों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरफरा बांध, डुमरिया घाट और विभिन्न छड़कियों का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था और राहत संसाधनों की भी समीक्षा की गई। DM ने अधिकारियों को तटबंधों में लगातार निगरानी, किसी भी क्षति की तत्काल सूचना देने और सभी आपदा प्रबंधन संसाधनों को हर समय तैयार रखने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार सरफरा बांध, डुमरिया घाट समेत सभी तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं से भी कटाव, रिसाव या क्षति की कोई सूचना नहीं है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने आज प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक एवं जन कल्याणकारी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की साफ सफाई, बायोमेट्रिक उपस्थिति, अभिलेख संधारण, RTPS सेवाओं, योजनाओं की प्रगति तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जाँच की गई। इसी क्रम में प्रखंड कार्यालय के सहायक को लॉग बुक अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति संतोषजनक पाई गई। अंचल कार्यालय में कैश बुक को अद्यतन करने हेतु अंचल नाजिर को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही RTPS केंद्र में उपलब्ध जन सेवाओं एवं उनके संचालन का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित ग्रामीण महिलाओं से भी उन्होंने संवाद किया और सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली। मीरगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरखौली ढाला के पास एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहचान छिपाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। पकड़े गए आरोपी का नाम रॉबिन सिंह है, जो सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी उखही गाँव के अनिल कुमार सिंह का पुत्र है। रॉबिन सिंह ने स्वीकार किया कि वह मनोज यादव और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों की तस्करी करता है। मनोज यादव के कहने पर ही कई बार मनोज यादव को अवैध हथियार भी उपलब्ध करा चुका है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हरखौली स्थित मनोज कुमार के घर भी छापेमारी की। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, किंतु पुलिस बल ने उसे भी खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सनोज कुमार, पिता राजेंद्र चौधरी, साकिन हरखौली

0: गंडक नदी में बारिश के वजह से थोड़ा जल की वृद्धि देखने को मिल रही है, परंतु स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रित है। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे YouTube चैनल पर पुराना कटाव का वीडियो जारी कर उसे हाल ही का वीडियो बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय पैदा हो रहा है। इसको लेकर आज गोपालगंज के बाढ़ नियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर से बातचीत की गई। उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। सोमवार को 1 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है जो निकल रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि बाढ़ को लेकर कोई खतरा नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं, अन्यथा प्रशासन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इस दौरान उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
1: में मेरा साधन तटबंध 80 किलोमीटर से 152 किलोमीटर के बीच और जितनी भी संलग्न छड़कियाँ हैं अभी पूर्णतः सुरक्षित है। कहीं कोई कटाव या इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। हम लोग दिन रात चौकसी और निगरानी बढ़ते रहे हैं। हर जगह जो है हर 1 किलोमीटर फ्रंट लाइन में मेरा तटबंध श्रमिक है। अभी जेई एसडीओ सब गश्ती दल रात भर गश्ती दल भी करते हैं और कहीं इस तरह का नहीं। अभी के टाइम तक हम लोग बहुत पूरे तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है। कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स जो है दूसरे जिला का मामला ला के कटाव का यहाँ एडिट करके यहाँ हमारे तटबंध में जो है नाम दे के इस तरह का भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ कटाव हो रहा है। और पूर्व के वर्षों का भी कुछ जो है यूट्यूब से अपना अपलोड करके कर रहे हैं। इस मामले में हम अभी आए थे डीएम सर गोपालगंज को, हमने इसका शिकायत भी किया है कि इस तरह की बातें हो रही है। और कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, सभी जो है इससे संतुष्ट है कि अभी सभी तटबंध मेरा सुरक्षित है। कहीं कटाव नहीं है। हम लोगों की रात भर गश्ती दिन भर 24 घंटा सतत निगरानी रख रहे हैं और अभी कोई बाढ़ की अभी समस्या नहीं है। अभी कोई इस तरह का पानी नॉर्मल में है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर फिर दोबारा सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कोई यूट्यूब में ना डालें दूसरे जिला का चीज़ों में। अगर इस तरह की बातें होती है तो विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाए।
0: पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। इन सभी को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र का है, जहां झपटमारी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी निहाल सिंह है, जो कुचायकोट के जगतौली का निवासी बताया जा रहा है। इधर हत्या के प्रयास में बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के साफिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी धीरज कुमार है, जो रंजीत शाह का पुत्र है, और दूसरा रंजीत शाह यह रामनाथ शाह का पुत्र है, यानी दोनों बाप बेटे हैं। और इनके साथ एक महिला को भी पकड़ा गया है। तीनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों नगर थाना क्षेत्र के पार नवादा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी भोला सहनी है, उर्फ धर्मेंद्र सहनी, दूसरा राम कृपाल सहनी और तीसरा चंदन कुमार बताया जा रहा है। ये सभी नवमी सहनी के पुत्र हैं। तीनों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त कुणाल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी हमीदपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर इसके गांव क्षेत्र से ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम राधे श्याम यादव है, जो शंभू यादव का पुत्र है, और यह कल्याणपुर कटहरी थाना भोरे का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, इसे भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी कई फरार अपराधियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर फरार अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने का प्रयास किया। इस दौरान सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इसमें भूमि विवाद, राजस्व,

0: सामाजिक सुरक्षा, आधार, सड़क, आवास तथा अन्य जन समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर तत्काल संपर्क कर आवश्यक निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, जिला पदाधिकारी ने बाढ़ को लेकर स्थिति का किया निरीक्षण, सदर एसडीओ ने अंचल कार्यालयों का किया औचक जांच, हथियार तस्करी के मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कटान का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ इंजीनियर ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-45651 या 97-97-06-575।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
13: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।

0: महाराज, इस देव पुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि यह राजमहल में टिका रहा तो यह अपनी तलवार की नोक से सारी धरती ना पाएगा। यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु
1: महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। यह आपके महलों, रंगशालाओं और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंध न सकेगा। यह अपना घर छोड़कर सन्यासी अवश्य बनेगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं।
2: एक ने कहा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दूसरे ने कहा सुंदर लड़कियां, महल और उससे जुड़े ऐशो आराम बच्चे को बांध ना सकेंगे, रोक ना सकेंगे। वो बड़ा होकर सन्यासी ही बनेगा। भारतवर्ष में शायद इससे बड़ी भविष्यवाणी कभी नहीं हुई।
3: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
2: नमस्कार, मैं अनुपम खेर। न्यूज टेलीविजन इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष हमारे आपके भारत के बनने और बढ़ने की कहानी है। भारत के इतिहास में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन, जिनकी बातें, जिनकी दी सीख ने इस भारत को बनाया है। अब सवाल यह है कि लोग इतने महान कैसे बने कि आज से 2500 साल पहले की घटना भी हमारी रगों में है और आज भी हमारी सोच के पीछे उनकी सोच होती है। ये महानता की कहानी नहीं है, ये आम से महान बनने की कहानी है। अगर भारत महान है, बड़ा है, आदरणीय है, तो उसके पीछे के महान लोगों की कहानी है। इस सीरीज में सबसे पहले गौतम बुद्ध।
3: भारत से लगे नेपाल के इसी लुम्बिनी में लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। आज से लगभग 2500 साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब उत्तरी भारत कई राजवंशों और गणतंत्रों में बंटा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया थे। लुम्बिनी से कुछ मील की दूरी पर स्थित कपिल वस्तु से शासन चलाते थे। सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में से एक उस सपने की कहानी भी है जिसे सिद्धार्थ की मां ने उनके जन्म से पहले देखा था।
4: मां माया देवी ने स्वप्न देखा, एक श्वेत हाथी, 6 दंत वाला सफेद हाथी, श्वेत हाथी आकाश से आए और मां माया देवी को 3 बार परिक्रमा करके उनमें प्रवेश हो गया। ये सपना उन्होंने देखा।
2: इस अद्भुत विचित्र स्वप्न के 10 महीने बाद मां महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी जिसकी सारी इच्छा पूरी हो। जन्म के बाद असित नाम के बड़े ऋषि कपिलवस्तु पहुंचे। सिद्धार्थ को उनके सामने लाया गया। नवजात सिद्धार्थ ने अपनी टांगें असित मुनि की दाढ़ियों में फंसा दी। असित मुनि ने कुछ देर बाद रोना शुरू कर दिया।
5: महर्षि, बालक सिद्धार्थ को कुछ अशोभ होगा क्या? महर्षि, कुछ तो बोलिए महर्षि।
6: नहीं राजा शुद्धोधन, नहीं, स्वयं काल भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बालक तो बुद्ध बनेगा, बुद्ध।
5: महर्षि जी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये बालक बुद्धि का धनी होगा, बुद्ध होगा। परंतु ये कहते हुए आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों?
6: मंत्री, तुम बहुत भोले हो। जब ये बालक बुद्ध बनेगा, मैं धरती पर नहीं रहूंगा, इसीलिए रो रहा हूं।
3: सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन और उनके मंत्रियों को असित मुनि की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। बाद में पिता शुद्धोधन ने ब्राह्मणों के एक दल को बुलाया। ब्राह्मणों ने बालक सिद्धार्थ को देखा और ज्योतिष गणना की।
0: महाराज, इस देव पुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि ये राजमहल में टिका रहा तो ये अपनी तलवार की नोक से सारी धरती ना पाएगा। अपने वेगवंत रथ के चक्र से ये पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लेगा। जहां जहां सूर्य का प्रकाश है और जहां जहां अंधकार है, वहां वहां इसकी राज्य सीमा और विजय पताका पहुंचेगी। ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु
5: परंतु क्या महाराज? परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए?
0: परंतु राजन, यदि ये देव कुमार घर छोड़कर बेघर हो गया, प्रवर्जित हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये धर्म विजय करेगा। धर्म विजय जो सम्यक संबुद्ध अरिहंत होगा।
3: राजा शुद्धोधन के महल में मौजूद 8 में से 7 ब्राह्मणों ने इसी बात को दोहराया। या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या धर्म प्रवर्तक सन्यासी। लेकिन वहां मौजूद ब्राह्मणों में से सबसे छोटा कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण खड़ा हुआ।
1: महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होकर इस विश्व में, इस संसार में एक नए धर्म की स्थापना करेगा, और मैं यहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों और काल गणनाकारों को चुनौती देता हूं कि इस राजपुत्र की एक ही गति है, दूसरी नहीं। महाराज, यह आपके महलों, रंगशालाओं और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंध ना सकेगा। ये अपना घर छोड़कर सन्यासी अवश्य बनेगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं।

0: राजकुमार सिद्धार्थ की मां महामाया की मृत्यु उनके जन्म के सातवें दिन ही हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, लेकिन ब्राह्मणों की भविष्यवाणियों से परेशान पिता शुद्धोधन ने दुख से जुड़ी हर बात को महल से निकाल फेंका। सिद्धार्थ के पास महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। सुख भोग विलास के अलावा भी जीवन के दूसरे रंग हो सकते हैं, ऐसी बातें सिद्धार्थ से दूर रखी गई। अपने इस जीवन की चर्चा खुद सिद्धार्थ ने आगे चलकर की थी।
1: देखो, मैंने सुख से भरा हुआ जीवन गुजारा था, बहुत ही ज्यादा सुख। मेरे तीन महल थे, एक जहां मैं सर्दियों में रहता था, एक जहां मैं गर्मियों में रहता था और एक जहां मैं बरसात में रहता था। बरसात के चार महीनों में मेरे मनोरंजन के लिए दर्जनों नाचने गाने वाली युवतियां रहती थी, उनमें एक भी पुरुष गाने और नाचने वाले नहीं होते थे।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
11: ये सब इसलिए कि सिद्धार्थ गौतम सन्यासी ना हो जाए। जिस तरह से सिद्धार्थ मौज मस्ती, नाच गाने में डूबे, राजा शुद्धोधन को लगा कि असित मुनि और कौंडिन्य ब्राह्मण की बात गलत होकर रहेगी। उनका बेटा भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ना कि घर घर घूमकर भिक्षा मांगने वाला सन्यासी। सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए, तब उनके पिता ने एक और बड़ा फैसला किया। फैसला था सिद्धार्थ की शादी का।
0: सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा ने सिद्धार्थ को स्वयंवर में चुना।

0: विवाह के बाद जिस तरह से सिद्धार्थ यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे राज परिवार की चिंताएं दूर होने लगी। सवाल था, कब तक? राजा शुद्धोधन ने महल और उसके आसपास से हर उस चीज या व्यक्ति को हटा दिया जिससे राजकुमार का मन प्रभावित हो सकता था।
1: राजा के निर्देश पर गरीब, लाचार और बीमार लोगों को महल से दूर कर दिया गया। महल के आसपास फैंटेसी से भरी दुनिया तैयार कर दी गई, जहां सब कुछ अच्छा अच्छा था, सभी लोग सुखी दिखाई देते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक से कहा, वो महल से बाहर घूमना चाहते हैं। ये खबर राजा शुद्धोधन तक पहुंची।
2: बंधुमान, नगर नायक को स्पष्ट कर दो कि आज से सिद्धार्थ के किसी भी मार्ग में कोई वृद्ध, कोई नंगा भिखारी, कोई दरिद्र, मृतक, कोई सन्यासी ना आ सके, और उनके तीनों महलों में सुरा और सुंदरियों का प्रबंध चौगुना नहीं 100 गुना कर दो।
0: राजा शुद्धोधन ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, लेकिन हुआ वही जिसका भय राजा शुद्धोधन और राज परिवार को सता रहा था।

0: ये कैसा मनुष्य है? चंदक, ये इतना झुक कर क्यों चल रहा है और डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? बोलो ना चंदक।
1: राजकुमार, ये व्यक्ति जरा से पीड़ित है, वृद्ध है, बूढ़ा है।
0: वृद्ध? ये वृद्ध क्या होता है?
1: राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति जो अभी यहां से गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते इसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया है।
0: हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है क्या? इसके जैसा और कोई नहीं है?
1: जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, ये प्रकृति का नियम है।
0: तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखने लगूंगा?
1: राजकुमार, राजा हो या रंक, जो जीवित रहेगा वो एक आयु के बाद वृद्ध होकर ही रहेगा।
0: चंदक, महल वापस चलो।
1: जी।
2: इससे अंदाजा लगाइए कि सिद्धार्थ एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का हिस्सा है। सिद्धार्थ गौतम से जुड़ी हुई कहानियों के मुताबिक उन्हें पहली बार यह आभास हुआ कि वृद्धावस्था, बूढ़ा होना उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिससे कोई नहीं बच सकता।
3: जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं है। महलों में भोग विलास के बीच पले बढ़े सिद्धार्थ का इस तरह से एक के बाद एक रोग और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से सामना हुआ। सिद्धार्थ के जीवन में उस वक्त क्या चल रहा था, उसका बस अंदाजा लगाया जा सकता था। बहरहाल, जीवन के जो अनुभव एक के बाद एक सिद्धार्थ को मिल रहे थे, उसमें जल्द ही एक निर्णायक मोड़ आया। सिद्धार्थ का सामना एक सन्यासी से हुआ।
4: मन के भीतर झांको और शांति को खोज लो।
0: छन्ना, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन है और इन्होंने और सब लोगों से अलग वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं?
1: देव, ये प्रवर्जित हैं, सन्यासी हैं। ये अपना संसार छोड़ चुके हैं, सो इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से क्या?
0: ये सन्यासी क्या होता है?
1: कुमार, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरे प्राणियों को देने के लिए और पुनः संचय के लिए ये सन्यासी बने हैं।
2: वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के सवालों से सिद्धार्थ का मन जूझ रहा था, तभी उनके सामने एक सन्यासी आया। सन्यास में उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा और उन्होंने अपने सारथी और दोस्त छंदक के सामने एक बड़ी घोषणा कर दी।
0: छन्ना, मैं भी सन्यासी बनूंगा, मैं भी साधु के साथ दीक्षित होऊंगा।
1: देव, ये क्या कह रहे हैं आप?
0: मैं गृह त्याग करूंगा, मैं भी सन्यास लूंगा।
3: सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की पूरी व्यवस्था थी, दुख और पीड़ा से जुड़ी बातों से भी सिद्धार्थ को दूर रखा गया था। सिद्धार्थ का विवाह भी हुआ और बच्चा भी, जिसके जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा, राहुल।
5: कुमार की जय हो, धन्य भाग हमारे। देवी यशोधरा ने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में राजकुमार को जन्म दिया। देवी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं, सकुशल हैं।
0: जाओ जाकर चंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी का कुशल मंगल पूछने का प्रबंध करें। ये राहु का जन्म है, एक और नया बंधन जन्मा है।
3: राहुल एक साल का हो चुका था, सिद्धार्थ की उम्र 29 साल की थी। राजमहल की दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन मस्तिष्क में विचारों का उफान था।
2: सिद्धार्थ इन्हीं विचारों उधेड़बुन के साथ एक रात जागे। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक को बुलाया। छंदक से कहा कि जाओ और मेरे प्रिय घोड़े कंथक को लेकर आओ। छंदक घोड़ा लेने चला गया। तभी छंदक समझ गया था कि आज की रात महल में उसके युवराज की आखिरी रात है, लेकिन सिद्धार्थ के जीवन की एक बड़ी लड़ाई बाकी थी। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के कमरे तक पहुंचे।
3: यशोधरा सो रही थी, बगल में उनका बेटा राहुल लेटा था। कुछ इस तरह के राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। द्वार दहली पर सिद्धार्थ रुक गए, वहीं से दोनों को देखते रहे। यशोधरा की तरफ सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ रुक गए। सोचा अगर जाग गई तो। राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी बाहर से आवाज आई,
6: स्वामी।
3: सिद्धार्थ के मन में द्वंद था। वो यशोधरा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए या नहीं, बेटे का मुंह एक बार देख लेना चाहिए या नहीं। उधर महल के बाहर छंदक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। छंदक ने आवाज लगाई,
0: स्वामी, स्वामी।

0: में दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन क्या महल की दुनिया का ऐशो आराम सिद्धार्थ गौतम को मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा था?
1: बुद्ध ने यशोधरा और राहुल के साथ भले ही हम लोगों की दृष्टि में अन्याय किया हो, इससे बुद्ध की अपने मनुष्य होने की जो स्थिति है उसमें कोई बड़ी कटौती नहीं होती। तो उसके मन में जो द्वंद्व रहा होगा वो सर्वथा मानवीय द्वंद्व है।
2: बहुत सारे प्रश्नों से जूझते हुए अंततः सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए और चल पड़े। लेकिन राजा जुद्धोधन की आज्ञा थी, इसलिए किले के दरवाजे बंद थे, हर जगह सैनिक तैनात थे। राजकुमार सिद्धार्थ के घर त्यागने की जो कहानियां हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक तैनात प्रहरी गहरी नींद में चले गए और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उनका घोड़ा कंथक सारी बाधाओं को लांघता निकल गया। आज हम महल छोड़कर जाने के बारे में एक बात तो कह ही सकते हैं कि किसी दूसरे इंसान की तरह ही सिद्धार्थ गौतम के लिए भी वो एक बहुत कठिन निर्णय रहा होगा। और जब वो किले से बाहर निकले तब उनके सामने एक और परीक्षा खड़ी हो गई।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
16: रुको सिद्धार्थ, आगे मत जाओ, क्योंकि आज से 7वें दिन इस राज्य का चक्र तुम्हारे कमलों में होगा और तुम सप्तद्वीप नौखंड के प्रतिपालक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे।
17: कौन हो तुम?
16: मैं वसपति मार हूं।
17: मार, मुझे सम्राट या चक्रवर्ती नहीं बनना, मुझे राज चक्र नहीं चाहिए, मैं धर्म का चक्र धारण करूंगा। तुम मुझे जो प्रलोभन दे रहे हो वो मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा।
18: इस तरह सिद्धार्थ ने कामना, इच्छा के प्रतीक वसवत्ती मार के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया। सवेरा होने वाला ही था, सिद्धार्थ, छंदक और उनका घोड़ा कंथक अनुमा नदी के पास पहुंच गए।

0: मेरे गृह त्याग और निष्क्रमण को संसार अब अनुमा के नाम से जानेगा।
1: देव, ये क्या कह रहे हैं आप? देव
0: छंदक, मेरे ये वस्त्राभूषण और कंथक को लेकर तुम वापस लौट जाओ। मैं अब सन्यास की शरण लूंगा।
1: तुम मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी सन्यासी बनूंगा। आज तक आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। नहीं राजकुमार, नहीं।
0: ये बाल यशोधरा को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं, मेरी तरफ से उसे मेरा कुशल कहकर दे देना, और वो अगर अधिक कुछ पूछे तो मौन ही रहना। भिक्षु को प्रसादन से क्या प्रयोजन?
2: यदि मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहें, अन्यथा भूमि पर गिर पड़े।
3: भारतवर्ष में आगे देखेंगे।
4: सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते।
3: भारतवर्ष, भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेल के साथ।
2: यदि मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहें, अन्यथा भूमि पर गिर पड़े।
5: कहते हैं सिद्धार्थ ने अपने बालों का जो गुच्छा हवा में उड़ाया वो हवा में रहा, नीचे जमीन पर आया ही नहीं। और इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ सबसे पहले सन्यासी बने। लेकिन जिस जगह सिद्धार्थ को पहुंचना था उसका रास्ता उन्हें कौन बताएगा? तो अब उन्हें एक गुरु की तलाश थी।
3: अब सिद्धार्थ पहली बार अकेले थे। कपिलवस्तु से पहले वह तब के मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। गुरु की तलाश में उन्हें उस समय के बड़े योगी आलार कलाम के पास ले गए। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को साधना की कुछ योग विधियां सिखाई। इनसे सिद्धार्थ की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वहां से चलकर गुरु उद्रक रामपुत्र के पास गए। यहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके साथ 5 शिष्य भी थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीकों को अपनाया। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था।
6: प्रकार का जो सन्यास, उसकी अलग अलग परंपराएं थी, उनका इन्होंने लगभग सभी का अनुभव किया बुद्ध ने। जैसे खाना छोड़कर, खाना त्याग कर, या पानी त्याग कर, भूखे प्यासे रहकर, या एक ही टांग पर खड़े होके, या बिना सोए, या मौन धारण करके क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। इन्होंने हर प्रकार का अनुभव किया।
3: लगभग 6 साल तक इस योग और अनशन की भीषण तपस्या की, अन्न जल त्यागा, ऐसी कठोर तपस्या की जिससे वो खुद मृत्यु के करीब पहुंच गए। बुद्ध ने कहा,
0: मेरा शरीर दुर्बलता की चरम तक पहुंच गया था। जैसे 80 साल वाले वृद्ध की गांठें होती हैं, वैसे ही मेरे अंग प्रत्यंग हो गए थे।
7: शाकी कुमार, जरा देखिए तो, आप कितने दुर्बल हो गए हैं। ऐसी तपस्या से भला क्या लाभ? देखिए, मैं आपके लिए खीर लाई हूं।

0: सिद्धार्थ समझ गए ऐसी तपस्या से उन्हें मृत्यु के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल खाना आरंभ कर दिया। मरणासन सिद्धार्थ को सुजाता नाम की लड़की ने खीर खिलाई। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सिद्धार्थ के पांचों शिष्यों ने उन्हें घोर तपस्या को त्यागते देखकर उन्हें छोड़ दिया। सिद्धार्थ पर उनके ही शिष्यों ने पथ भ्रष्ट होने के आरोप लगाए।
1: सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे गुरु नहीं हो सकते। चलो चलो साथियों, आओ।
2: अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था। कहते हैं उन्हें एक वीणा बजाने वाला दिखा। सिद्धार्थ ने देखा कि जब वीणा के तार को ढीला छोड़ दिया जाता है तब वीणा बजती नहीं थी, और जब कसकर भरा जाता था तो तार टूट जाता था। जब तार की कसावट कहीं बीच में होती थी तो मधुर संगीत निकलता था। वीणा की इस प्रकृति ने सिद्धार्थ को रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग का। यही मार्ग ज्ञान प्राप्ति की अवस्था तक उन्हें ले जाने वाला था।
3: जब बुद्ध थे तो अतिरेकों का जमाना था, बहुत कर्मकांड का भी अतिरेक था, और दूसरी तरफ सन्यासियों और इस तरह के लोग जो थे कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, सन्यास ले लो, वो भी एक अतिरेक था। तो एक तरफ भोग विलास कर्मकांड का अतिरेक, दूसरी तरफ विराग सन्यास सब कुछ छोड़ने का अतिरेक। उन दोनों के बीच बुद्ध ने मध्यम निकाय की बात की, यानी बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, जिसमें अतिरेकों से बचा जाए।
0: मध्यम मार्ग सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा का सार माना जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने में सन्यासी सिद्धार्थ को 7 साल लग गए। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश उन्हें थी वो अभी दूर था। सिद्धार्थ को पता चल गया कि न घोर तप से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा और न ही राजमहलों में भोग विलास से। मध्यम मार्ग रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। अंततः आज के बिहार के गया जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर साधना में लीन हो गए थे।
4: जब वो बैठे बोधगया में, तो बैठने के पहले उन्होंने एक संकल्प लिया। इहासने सुसतमे शरीरम त्वगस्थि मानसंग प्रलयंग चयातो अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभाम नैवा सनात मतस्चलिष्यते। मैंने इसी आसन में, इहासने सुस, इसी शरीर से जो अप्राप्य बोधि है उसको बिना प्राप्त किए हम नहीं उठाएंगे।
0: एक तरफ सिद्धार्थ प्रण कर ध्यान में लीन थे, दूसरी तरफ इसी अवस्था में उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना था। सिद्धार्थ के सामने अहम राग द्वेष और अहम का प्रतीक माना जाने वाला मार फिर आया और सिद्धार्थ के ध्यान में खलल डालना शुरू किया।
5: हम लोग हिस्ट्री में ये समझते हैं कि ये मार नाम का एक जो विषय है वो एक अड़चन का उदाहरण है। अड़चन को ही मार कहा गया है, हेजिटेशन को मार कहा गया है।
0: मार ने अपने राक्षसों के साथ सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ध्यान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़े जा रहे थे। उनके सामने अतीत की स्मृतियां घूम कर निकल रही थी और अंततः 35 साल के सिद्धार्थ बुद्ध बने। बुद्ध यानी वो जो जागृत हो। उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
15: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
14: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
15: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
14: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
16: ओम नमः शिवाय।
17: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
16: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
17: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
16: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
17: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
16: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
17: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
16: बुकिंग नंबर 91555485507 या 9162933538।
17: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
16: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
17: बोलबम, हर हर महादेव।
18: आप अनेक जाति संसारंग संदा विसंग अनिभिसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग नकायसी सब्बा ते फासुका बग्गा गह कूटंग विसंखितंग। हे ग्रह कारक, अनेकों बार इस संसार में मैंने जन्म लिया है, इस भव चक्र मेरा आवागमन जारी रहा है, लेकिन अब तुझे मैंने जान लिया है, समझ लिया है, अब तू पुनः घर नहीं बना सकता है, यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा, पुनः भवोति तीति, इस संसार में मेरा पुनः आगमन नहीं होगा।
4: बुद्ध को आनंद अनुभव हुआ, वो अपनी सारी जो सारा विराटता के साथ, पूरे संभूति के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो गए। एक उसे बात तो देखता है, सारा हम, सारा सब कुछ हमें, हर कण कण में, हर में वो अनुभव करता है, वही चेतना है, वही हम है। ये अनुभव तो होना कि हर कण में वही है, हर चीज़ में वही, तो अपने आप को आत्मसात कर देना पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से, पूरी मानवता, ये निर्वाण का अर्थ होता है।
2: राजकुमार सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध बनने के बाद वो एक बार फिर दुविधा में थे, असमंजस में थे। जो ज्ञान, जो बोधि उन्हें प्राप्त हुई थी, उसे बताएं या ना बताएं, और बताएं तो किसे बताएं, बताने पर लोग उन्हें पागल तो नहीं समझेंगे।
0: गौतम बुद्ध अपने 5 साथियों को ढूंढते हुए वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव नाम की जगह पहुंचे। यही जगह आज सारनाथ के नाम से जानी जाती है। यहां एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध की उपदेश देती हुई एक मूर्ति लगी है, और उसके सामने
19: दी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
20: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
21: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
20: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह घटना कल दोपहर दक्षिण

0: टीम के समरदुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद डीके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्ते लागू।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
8: और 90971602।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कुंडा एक्ट के तहत लाने का फैसला किया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर किया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक समेत अन्य राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर वरीयता देने का प्रावधान किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए अधिनियम में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई। संशोधन लागू होने के बाद पेपर लीक के आरोपितों तथा सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने पर ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान होगा। वहीं मंत्री परिषद ने राज्य में शोध, तकनीकी नवाचार और रोजगार परक उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सानी वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा भागलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI और कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बैठक में अग्निवीरों को वनरक्षी की नियुक्ति में न्यूनतम 20% आरक्षण देने के लिए बिहार अवर वन सेवा संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रति छात्र 6,000 रूपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन और परिसीमन को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: अधिसूचना के अनुसार जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा और पंचायत मुख्यालय भी वही होगा। हालांकि यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है तो मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सर्वाधिक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा करेंगे। पंचायत क्षेत्र की सीमाएं प्राकृतिक सीमाओं के साथ साथ सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक स्थलों को आधार बनाकर निर्धारित की जाएंगी। सामान्यतया किसी राजस्व गांव का विभाजन नहीं किया जाएगा। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदन में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नियम और प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भी कई अन्य विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। विधान परिषद में आज गैर सरकारी संकल्पों से संबंधित कार्य निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए विधायकों से सदन की कार्यवाही के दौरान पूरे समय उपस्थित रहने और विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की अपील की है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने विधायकों से सरकार के योजनाओं और विधायी कार्यों को अच्छी तरह समझने तथा जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे देने की अपील की। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर 3 श्रेणियों में रखते हुए वरीयता देने का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था के अनुसार 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को सर्वोच्च वरीयता में 20 अंक मिलेंगे। 60-79% दिव्यांगता वाले शिक्षकों को 15 अंक जबकि 40-59% दिव्यांगता वाले शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे। इस श्रेणी में दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित और श्रवण बाधित शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति में कुल 14 वर्गों की 4 वरीयता श्रेणी निर्धारित की है। राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी के आरोप में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 265 दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। साथ ही 44 उर्वरक दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरकों की जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यू डेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार यह वैक्सीन 4-60 वर्ष आयु के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान शुरू किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान 10 अगस्त तक चलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और लखीसराय समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गया, नवादा, गोपालगंज, सीवान और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। बागमती नदी रून्नीसैदपुर में लाल निशान से 30 सेंटीमीटर जबकि बेनीबाद में 100 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर नदियों के बढ़ते जलस्तर से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, खगड़िया और सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी फैलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सुपौल जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कोसी बराज टूटने की चल रही खबरों का खंडन किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोसी बराज पूरी तरह सुरक्षित है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए सही सूचना के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा कि भ्रामक खबर प्रसारित कर लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न करने के मामले में संबंधित फेसबुक अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पटना जिले के सम्यागढ़ थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को 27,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार थानाध्यक्ष जेसीबी संचालक की अनुमति देने के बदले शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के मीठनसराय माधोपुर गांव में ब्रह्म पूजा के दौरान पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं जिले के मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में अपराधियों ने एक दंपति की हत्या कर दी। दानापुर व्यवहार न्यायालय ने एक बच्चे की हत्या के मामले में उसके नाना दुखित यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना जिले के मसौटी स्थित भगवानगंज में हथियारबंद डकैतों ने एक सर्राफा कारोबारी और उसके परिवार को बंधक बनाकर लगभग 45 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई। घटना के बाद वाल्मीकिनगर बघा रेलखंड पर लगभग 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। पटना जिला आसूचना इकाई और कदमकुआं थाना पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वह 6 सालों से फरार चल रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल विधानसभा में पेश होगा, सीएम की अध्यक्षता में बनेगी परिषद। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधानसभा में 87,383 करोड़ की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर, सोशल मीडिया पर गाली गलौज और पेपर लीक के आरोपों पर लगेगा गुंडा एक्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, शिक्षकों का ट्रांसफर अब अंकों से होगा, बीमार और दिव्यांगों को प्राथमिकता, एपीआई सिस्टम से बनेगी मेरिट। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, जोरदार हंगामे के बीच संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। आज अखबार ने लिखा है, दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन, 70 हिरासत में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कुंडा एक्ट के तहत लाने का फैसला किया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर किया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक समेत अन्य राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर वरीयता देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
9: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल

0: मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते।
6: गाना सुनना है, पांच प्रश्न से बोल रहा हूँ, पांच प्रश्न से संदीप कुमार शर्मा हूँ।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका।
6: मैडम मौसम भी सुहाना हुआ है, दाम भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, आवाज थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी काउंटेड काम चला रहे
5: हैं।
6: उमर जैसा दिन हुआ है मैडम। गाना सुनना है,
5: बता दीजिए कौन सा।
6: हिंदी गाना कोई अपने पसंद से सुना दीजिए।
5: अच्छा चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते
0: मैडम, गाना सुनना है
1: जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: तो गाना है खेसारी लाल का मर गई दीवाना गोयल मैहर के, मर गई दीवाना मैहर।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, मेरा भाई है, अरविंद है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: Hello.
8: हेलो
11: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
11: भारती मैम नमस्कार।
8: नमस्कार,
11: मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, करजुआ जिला देवघर झारखंड से। मैं
8: हाँ जी, कैसे हैं आप?
11: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
8: हम भी अच्छे हैं।
11: और आपके रेडियो रिमझिम के पूरे टीम सब कैसे हैं?
8: सब कोई अच्छे हैं
11: जी। बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी मैम?
8: नहीं।
11: पर ट्राई किया तो जो बता रहा
8: था,
11: पुरानी भोजपुरी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम।
8: कौन सा?
11: गंगा किनारे मोरा गाँव का, आशा भोसले की आवाज में है, गीत के बोल रहे हैं।
8: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी?
11: जी मैम, सबसे पहले आपको रेडियो के जितने भी श्रोतागण हैं देश विदेशों में, सब को सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हमारे साथी सर हैं, मदन कोल हैं, राजकुमारी हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, भोलाना कोल हैं, कृष्ण कोल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ
8: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम।
11: ओके मैम।

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी आपको भी स्वागत है मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम का रिकॉर्डिंग करने का। और मैं बुधवार को क्यों नहीं हुआ रिकॉर्डिंग?
1: छुट्टी पे थे हम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए।
0: अच्छा तो चलिए, ये तो भाई किसा बस की बात है, कभी सा तबीयत खराब हो जाए, चलिए कोई बात नहीं है, एक दिन छुट्टी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। सपनों से प्यारा घर दुआ के लिए है ना, हमारा घर दुआर सपनों से प्यारा कैसा कैसा गाना है वो, है ना। हाँ, एक घर संतार बोलते है, वही गाना सुनवाइएगा आज।
1: अच्छा
0: तो और कैसा दिन कट रहा है मैडम?
1: सब सही कट रहा है,
0: ऊपर वाले के मस्जिद से ना।
1: हाँ।
0: एक बहाना अच्छा है यार, ऊपर वाले के मस्जिद है ना, अच्छा बहाना है, जो कुछ अपने से ना हो ना तो ऊपर वाले घर पे डाल दो।
1: नहीं आदमी तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन वो साथ ना हो तो कहाँ कुछ होने वाला है।
0: तो वैसे तो जिंदगी में चढ़ाव उतार होता ही है, घबराना भी नहीं चाहिए, है ना। अपना जो योगदान पूरा देते रहना चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है।
1: ये तो सही बात है।
0: तो ऐसा ही संघर्ष कीजिए मैडम, एक दिन फल मीठा होगा। हाँ वो कहा एक कहावत और है ना, मेहंदी भी जाती है ना, रंग हीना लाती है मेहंदी भी जाने के बाद। जब पीता है मेहंदी तभी तो कलर आता है, वही बात है। तो हमको ये जो है मैडम आज सोचते थे कि घर द्वार फिल्म का गाना वो सुना जाए। ये घर द्वार का बहुत कम ही पैसा है रेडियो स्टेशन पे, लोग नया तो नया, पुराना तो बहुत कम ही लोग नाम लेते हैं। हाँ चलिए, तो आपको आज तो चलिए मेरे तो ठीक है, सब रख रहे हैं, गाना सुनवा दीजिएगा।
1: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके थैंक यू।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
11: ब्रेक के के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
13: नमस्ते मैडम जी।
12: नमस्ते,
13: भारती बोल रहे हैं मैडम जी।
12: हाँ,
13: और मेरे रिकॉर्डिंग ना हुआ?
12: नहीं,
13: बहुत मत बता पता।
12: बुधवार को नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग।
13: चलाती है दूसरा मैडम चलाती है?
12: हाँ हाँ, कभी कभी कोई और भी रिकॉर्ड करती है।
13: और मैडम जी और अपनाइए
12: अच्छा है? हाँ मेरा अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: जी अच्छा।
12: नाश्ता हो गया आपका?
13: जी मैडम जी।
12: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
13: तो मेरा गाना भी सुनाती है नई नाम से, कभी छोड़ देती है कभी सुनाती है।
12: नहीं नहीं, हम छुट्टी में थे ना इसीलिए नहीं चला।
13: सुना दीजिएगा रबू ने बनाया इसीलिए।
12: एक बार और क्लियर कर दीजिए।
13: ये रबू ने बनाया इसीलिए।
12: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
13: ये मैडम आपको, आज इतना रेडियो शब्दों सुनता है
12: इसी के साथ। चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
13: ये मैडम जी नमस्ते।
12: नमस्ते।

0: हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में। हेलो
1: जी, मेरे अस्सलाम वाला पठानपुर से।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है, आपने बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज तो जुम्मा है, बोले कोई वाले सुना दीजिएगा, आज जुम्मा है।
0: अच्छा, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंगीन 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हेलो
11: हेलो,
10: हाँ बोलिए।
11: क्या हाल है?
10: मेरा तो ठीक, आप अपना बताइए। हाँ खाना हो गया आपका? हो गया, नाम बता दीजिए अपना।
11: संध्या कुमारी।
10: अच्छा तो हाँ हाँ, गाना किसी को सुनाना भैया?
11: आप रेडियो
10: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो 90.4 FM
1: जी, गाना सुनना था।
0: नाम बता दीजिए।
1: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं, जिला भागलपुर तीर्थ ग्राम प्रसन्न।
0: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: मेजर साहब का सुना दीजिए।
0: अच्छा,
1: अकेली न बजा रही गया।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: पवन को सुनाना।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhvar aur

0: सुनाइएगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, और जल्दी जल्दी बताइए कब तक बजेगा, मतलब आज या कल
1: करेंगे बजाने को, नहीं तो कल तो बज जाएगा।
0: मैम तो फर्स्ट में लगाए तो कभी भी फर्स्ट में नहीं पाता है, फर्स्ट में बजाइए ना कभी।
1: अच्छा, पूरी कोशिश करते हैं,
0: कोशिश करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करके आप मेरा करेंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है मैम।
1: जी जी
0: जी मैम, इंतजार करेंगे आपके फोन का। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको डायरेक्टर सर धन्यवाद, शो हमेशा चलाइएगा मैम।
1: जी जी बिल्कुल, आपको शो अच्छा लगा इसलिए आपको धन्यवाद।
0: जी मैम, सोनी मैम नहीं आ रही है क्या?
1: आती हैं।
0: इस शो में नहीं आ रही है
1: वो, योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना अभी, इसीलिए। और ये
0: तो कोशिश नहीं की उस में आने का, भोजपुरी एक्सप्रेस में
1: आप
0: आधे घंटे के लिए भी आइएगा, कोशिश कीजिएगा आने का, हमको बहुत अच्छा लगेगा, दो आदमी चलाएंगे शो तो।
1: इसके लिए सर बोलेंगे तभी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के अनुसार ही होता है।
0: जी मैम, ये भी आता है। चलिए धन्यवाद, और भी लोग हैं, हम जा रहे हैं और लोग जुड़े।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए 92.4 FM।
0: बाय
1: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्रामदेव जिला कुशवाहा।
0: जी क्या हालचाल है आपका?
1: अच्छा,
0: आपकी आवाज कटकट की आ रही है।
1: अच्छा है, मैम अपना बताइए।
0: हम भी ठीक हैं।
1: और मौसम क्या हाल चाल है?
0: मौसम तो अभी फिलहाल ठीक है, ठंडा है।
1: बारिश वगैरह आ रहा है कि नहीं उधर?
0: बारिश तो आता है दिन में या फिर रात में, एक बार आ ही जाता है।
1: हमारे तरफ भी बारिश भेजिए, हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रहा।
0: अच्छा बिल्कुल जाएगा।
1: मुझे गाना सुना दीजिए। एक गाना मैं फिल्म में तारों की रात भर तेरी दिख रही रहता है।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: मैं फिल्म में सितारों की रात भर तेरा दिख रही रहता है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आपके लिए और पूरे रिमझिम परिवार को, जितने भी रिमझिम श्रोता है सभी के लिए।
0: जी जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrawar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 80-29-94-11. Ji haan, 80-29-94-11. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
17: Hello.
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम्स 92.4 एफएम में।
17: नमस्कार।
15: नमस्कार,
17: ये भारती जी ना? क्या हाल
15: बा? हाल तो ठीक बा, अपन बताएं।
17: बस ठीक है बा, आज बहुत परेशान हो गई हूँ।
15: क्या है?
17: फोन लगाओ तो लगाओ।
15: अच्छा फोन ना लगा
17: ना, आज बहुत बिजी हम कहने की बुझाता है सोनी जी आई है क्या, इसीलिए बिजी चल रहा है।
15: नहीं
17: वो मनोरमा मैम को कब कब हुआ था रिकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं था।
15: वो सोमवार रिकॉर्ड की थी।
17: पिछले सोमवार को?
15: पिछले सोमवार को
17: हमें पता नहीं, हम भी तो किए थे तो आपसे बात हुआ था ना।
15: इस सोमवार को नहीं, ये पिछले सोमवार को हुआ था।
17: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगला सोमवार को, इस सोमवार को नहीं। वही मैं सुना, कल सुना तो मैं सोचा कि मनोरमा मैम पे कभी तो बातें नहीं हुआ है, पता नहीं कब हुआ है रिकॉर्डिंग कब नहीं।
15: नहीं तो इस बार बुधवार को कहाँ रिकॉर्डिंग हुआ।
17: तो अब की बार तो बुधवार को तो नहीं हुआ है, वो मैं पता है। और अभी क्या हो रहा है?
15: अभी बातें हो रही हैं सभी से और क्या।
17: चलिए ठीक है, अब मुझे गाना सुना दीजिए।
15: बता दीजिए।
17: वो शादी हुई बर्बादी हुई फिर के रख के।
15: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
17: काफी लोगों को।
15: अच्छा चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 एफएम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम ठावे राजन मार्ग से रामाजी प्रसाद।
0: हाँ जी, हाल चल बरा और
1: हाल चाल ठीक बार आप बड़ी पसंदा होता।
0: अच्छा, गर्मी होता है। बता दी
1: बना के क्यों बिगाड़े नसीबा ऊपर वाले।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों सुनाओगे बा?
1: बाजार में समोसा वाला पप्पू प्रसाद, सब्जी वाला राम प्रसाद, किराना वाला हरेंद्र प्रसाद, हम रहुआ सब कोई।
0: जी जी, चलिए फिर एक बार और गाना प्ले करते नहीं सुनत नहीं सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
14: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
15: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
15: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
15: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
15: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
14: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
15: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
18: जी अस्सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम,
18: क्या हाल है?
17: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
18: मेरा भी ठीक है। हाँ, सब बताइए। नाश्ता हो गया?
17: जी मेरा नाश्ता हो गया। आपका हो गया?
18: हाँ मेरा भी हो गया है।
17: और सब सुनाइए, और सब ठीक है ना?
18: हाँ हाँ, बताइए।
17: जी जी, हमारा भी ठीक है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
18: गाना सुनेंगे, अभी से बता रहे हैं। वो गाना है ना, मेरा प्रिया बड़ा रंगीला। यही वाला सॉन्ग बजा दीजिएगा।
17: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
18: सबसे पहले मेरी भाभी रुकैया को, और आपको, सोनी भैया को, दिव्या मैम को, और मेरी बहन लोग है, और सुनने वाली सभी दोस्तों को सुनवा गाना गा रही हूँ।
17: जी जी बिल्कुल, तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।
18: थैंक यू मैम,
17: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम, कैसे हैं आप लोग?
1: नमस्कार, हम सभी तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं, आप लोग से दुआ का आशीर्वाद से।
1: नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है, अभी तो अपनी दुकान पे हूँ मैं।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया है। बता दीजिए कौन कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: हाँ जी, आज सिखाए गिटर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: गाने के बोल
0: दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त हो रहे हैं उन सभी लोगों का साथ में सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 92.4 एफएम में।
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार
12: जी मैम, गाना सुनना था
11: जी। नाम बता दीजिए अपना।
12: जी मेरा नाम पप्पू कुमार शाह है, पड़ा बड़हरिया से।
11: जी
12: कैसी है मैम?
11: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: जी मैम हम भी अच्छे हैं। आप नहीं आई है क्या मैम?
11: जी मैं तो भारती बोल रही हूँ।
12: तो भारती में बोल रहे हैं, हमसे दूसरा कोई थोड़ा आवाज आ रहा है। तो गाना सुना दीजिए।
11: कौन सा?
12: प्रेम रतन धन पायो।
11: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
12: अब रेडियो रिंजन जिसमें भी श्रोता सुन रहा है सभी के लिए, अब आप भी सुनेंगे।
11: जी जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 92.4 एफएम।
12: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग भारती मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, बहुत ट्राई कर रहे तब बाद में फोन लगी हमारी।
1: अच्छा,
0: भारती मैम बोल रही ना?
1: हाँ हाँ।
0: तो मैम क्या हो रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं, बस कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है
0: जी। मैम क्यों नहीं लगता? बहुत ट्राई करने के बाद आधा घंटा से ट्राई कर रहा हूँ मैं।
1: तो बहुत कॉल बिजी भी तो जा रहा है।
0: हाँ, बहुत बिजी बिजी बिजी हर समय बता रहा है। मैम एक तो गाना सुनना था
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
0: प्यार झुकता ही कि नहीं, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, क्योंकि हमारी वाइफ का चॉइस है कि प्यार झुकता नहीं का सॉन्ग सुनना है।
1: अच्छा, प्यार झुकता नहीं मूवी है?
0: जी जी जी, मूवी का नाम है प्यार झुकता नहीं, उसका।
1: अच्छा,
0: कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: चलिए। और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
0: सॉन्ग तो सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाना है और अपने नाती पोता बेटा बेटी दामाद बहू सबको सुनाना है।
1: अच्छा चलिए ठीक है, अपना नाम भी बता दीजिए।
0: मेरा नाम शंकर गुप्ता है, मैं गया जी से बोल रहा हूँ। मैं इसके पहले भी कॉल किए थे लेकिन आपने गाना बजाया, हमें बहुत खुशी हुई।
1: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं
3: श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8009294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे। समय 9:23 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू हो चुका है SMS फरमाइश का। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, तो पुराने गाने के साथ ही इस कार्यक्रम में इंजॉय करना है। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप भी फरमा सकते हैं अपने पसंद के गाने और सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, किसी को सुनाना चाहे तो भी सुना सकते हैं। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया जी नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। और गाने सुनने हैं तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम दिल्ली से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब मस्त है ना? और मैं भी जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, एकदम बढ़िया है। और अपना बताएं कि आप कैसे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है शौंग मेरे महबूब, वो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं तेजपुर आसाम से सगीर अंसारी जी, और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम शाहजहाँ और हाजरा को। तो बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय क्या हाल है, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हैप्पी वाला बर्थडे है तो ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं रेडियो रेमझिम परिवार की तरफ से। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में जो भी मन्नतें मांगे वो पूरी हो। और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलिलिया से। और आगे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को रोकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप जी की, और गाने के बोल देते हैं तू धरती।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेम झीम 94.4 FM पे अभी सुन रहे थे हमें सभी। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो आगे बढ़े मैसेज देखा जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि दिलीप राम भाई का पसंद मुझे बहुत पसंद है। और इस मैसेज को करते हैं शगीर अंसारी जी, बिल्कुल कमल के गाने के फरमाइश किए थे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू, मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और मन्नतें भी मांग रखी हैं, बस पूरा होने का इंतज़ार है। बिल्कुल पूरा होगा। और इस मैसेज को करती हैं शबीना। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा, हेलो हाय सुनो।

भैया जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आर्य को गुड इवनिंग। हमें गाना सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कृष्ण मोहन जी, मिलते वक्त नाइट नहीं होता है, इवनिंग होता है। और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश आगे में से पहुंचा हुआ है। और आगे लिखा गया है कि कमरान रशीद पकड़ी सुल्तान, सोनू भाई को मेरा सलाम, कैसे हैं? और आज तो खूब पूरी खाए होंगे, किस बात की? लिखे हुए शफाक की शादी था शंग, बाबुल की दुआएं लेती जा। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। और आप लोगों को जानकारी है, आप लोग गए होंगे तो आप लोग तो खूब खाए होंगे, तो बताइए कितना खाए। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे जी। सर जी, मुझे गाना सुनना है जीता था जिसके लिए, अनामिका चौधरी, प्रेम नगर बस्त्रा, राजा लालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने की दुआ मांगी है, मैंने तो सिर्फ हर दुआ में तेरी ही वफा मांगी है, ये दुनिया लाख जले हमारी मोहब्बत से, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुझे मोहब्बत करने की सजा मांगी है। सुनो भाई, शुक्रिया आपको, और सुन लिए आपके साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और कहते हैं कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। बिल्कुल आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए अगली गाने की फरमाइश, चलिए कमाल के गाने की फरमाइश भी पहुंचा हुआ है। कहती हैं कि मेरा भी सॉन्ग जल्दी सुना दीजिए, तो जल्दी ही सुना देते हैं। और लिखी हुई कि मेरी सिस्टर हैं और फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ, जो अपनी दुआओं को सॉन्ग के माध्यम से देना चाहती हैं। सॉन्ग है, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो, प्लीज सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। रेडियो एम छम 94.4 FM पे।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 90.4 एफएम पे सोशल लाइफ में इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू हम भी हैं भाई जुड़े हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि पांडे सरिया गोपालगंज से, सोनू भाई क्या हाल चाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है, अपना बताएं कि आप कैसे हैं और स्वागत है आपका। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा संग बजेगा कि नहीं सर जी। बिल्कुल बजेगा और यदि आपकी फरमाइश होती है तो। अगली मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दिल में मोहब्बत हो तो दिल भर सुहाना लगता है, हो हाथों में हाथ तो सफ़र सुहाना लगता है, फुर्सत के कुछ पल चुरा कर जिंदगी से जब वो घर में रहते हैं तो घर सुहाना लगता है। सुनो भाई, आपको तो निमंत्रण मिला होगा पर कमरान भाई पूरी खाने गए थे यही लगता है। बिल्कुल गए होंगे और इसीलिए तो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक बताए नहीं कि कितना खाए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मेरा भी मैसेज देखिए और हमारा भी फरमाइश बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करती हैं, लिखती हैं कि हेलो भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, एकदम बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साजिदा अंसारी मीरगंज से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर मैं भी आ चुकी हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि रोने की वजह ना थी ना हंसने की बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपाना था। मडरिया थाना क्षेत्र भालापुर से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे। आगे मैसेज पहुंचा, थैंक यू दिल से सॉन्ग सुनाने के लिए और मेरे तरफ से हैप्पी पार्टी भी है आप सब के लिए। अब भी आप लोग आ सकते हैं मेरे घर, एड्रेस है दुलेलिया रेलवे ढाला। बिल्कुल जो जाने योग्य होंगे बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, जो जाने योग्य होंगे वो भी अस्कत के मारे नहीं पहुंच पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाह काफ़ी प्यारा संग रोशनी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने की फरमाइश हम सगीर अंसारी जी की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम झिम 90.4 एफएम पे।

0: रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन ले। शगीर अंसारी जी की फरमाइश और यहाँ पे अगली मिसेस अगले गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और इस गाने के फरमाइश करते हैं और बहुत दिन के बाद गाने के फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं कमरान रशीद जी। इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है बाबुल की दुआएँ लेती जा, इसलिए काफ़ी प्यारा गाना है। आपके गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।
1: जा तुझे

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट
9: थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
10: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
10: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुनने आप सब। और छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और समय आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़े जाए। और आगे कई मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि इसके बाद मेरा बजा दीजिए, तो बिल्कुल आपके भी गाने बजाएंगे और थोड़ा सा समझे। आपसे भी पहले कई लोग मैसेज किए हैं जो इंतज़ार में अपने गाने को लेकर बैठे हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश करते हैं दीपक एंड जेलर जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो चलिए, अभी आपकी दर्द ख़त्म नहीं हुई लगता है, इस लगन भर रहेगा और अगले साल ख़त्म कर दीजिएगा पक्का, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

टुडे रेम सीम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश और इस गाने के फरमाइश करने वाले दीपक अंजेलर जी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है सुनो भैया, आपके गोपालगंज में बारिश आ रही है, सोचा कि पता कर लूं। तो बिल्कुल बारिश तो हो रही है अभी और इस मैसेज को करते हैं लक्की जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि इसके बाद मेरा, और इस मैसेज को पहुंचाई है सजदा अंसारी मिर्गन से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: आप सब और बिल्कुल यदि ढूंढा जाए तो मिल ही जाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सोनम बाबू, सोनम बाबू हम भी हैं भाई, जुड़े हैं और हमें भी एक सॉन्ग सुनना है। फिल्म है मासुका कुमार शानू का, सॉन्ग है दीवाना दिल जुड़, और डेडिकेट मैडम जी को पहले, और शफाक, रोशनी, हिना, हाजरा, शबीना, निशा, सबीता, खुशी और ब्यूटी, दिलीप भाई और बाकी सोनम बाबू। तो चलिए हम भी हैं आप लोग के साथ ही हैं। और आगे मिसेज कहते हैं कि सोनम बाबू दीपक भाई को राय दे दे कि अब ये गीत छोड़ दे, गाए तू ना मिलबू तो हम योगी बन जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे कुछ मैसेज है तो मैसेज देख लिया जाए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड नाइट आपको सर और सारे रेडियो दोस्तों को, और इस मैसेज को करती है निशा पांडे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच भैया सॉन्ग प्ले करने के लिए, सजदान सारी मीडियम से आपको धन्यवाद है रेडियो रामझम सुनने के लिए। आगे मैसेज हमारे पास के कई पहुंचाए हुए हैं जो हम शामिल नहीं कर पाएंगे, और यह मैसेज पहले भी पहुंचा हुआ था, सनोज जी आप अच्छे लाइन को भेजें, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस लाइन को शामिल नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपसे कह दें कि मजाक करने की भी हद होती है, हम रेडियो पर बैठे हुए हैं और आपस में हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों मजाक कर ले। हमारे साथ कई लोग हैं जिनको कुछ बुरा भी लग जाएगा, हम दोनों तो मजाक कर लेंगे लेकिन अगला का भी ध्यान रखना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: रेडियो एम सी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि सर मेरा नंबर कब आएगा, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं और इस मैसेज को करते हैं गाने के फरमाइश करती हैं अनामिका चौधरी, और गाने की फरमाइश करती हैं जीता था जिसके लिए मरता था। तो इन्हीं की फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और देखेंगे कि समय हमारे पास बहुत कम है और गाने थोड़े लंबे हैं, तो पूरे गाने सुनते सुनते कार्यक्रम की समाप्ति से कुछ समय आगे भी निकल जाएंगे, तो आगे मैसेज और गाने की फरमाइश प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। अंतिम गाना यही रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी नहीं बनाया और किसी और का भी ना होने दिया। शामिल कीजिए। बिल्कुल हमने शामिल कर दिए हैं और आगे बढ़ते हैं, अब कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। तो आप सब अंतिम गाने सुनते रहें, इंजॉय करते हैं रेडियो रमछिम 90.4 एफएम जो हमेशा कहता है सुने दिल से। मिलते हैं कल, नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं आप सभी के बीच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और मेरी तरफ से आप सभी के लिए मनोज तिवारी की आवाज़ में एक प्यारा सा सॉन्ग पेश करती हूँ आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

तो अभी आप लोगों ने सुना हमारे साथ मनोज तिवारी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी सॉन्ग के साथ बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं मैं प्रदीप सहानी दिल्ली से, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं भी बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से, एक गाना सुनना है, कितना हसीन चेहरा। तो बिल्कुल आपको गाना सुनाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ा। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो मैम, मैं निर्मला प्रजापति जादूपुर से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं हाय नमस्ते मैम, कैसी हैं आज, मेरी फरमाइश है क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, यह सॉन्ग बजा

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड।

0: गोपालगंज संपर्क करें 99-554-97-644।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
0: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 96-56-59-536 या 96-56-57-902।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं और योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, जो कि लिख रहे हैं आज हमको भी गाना सुनना है, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली देवी का गाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा भी ख्याल रखिए मैम। तो मैं आप सभी को बता दूँ एक बार कि आप सब अपना नाम भी मेंशन किया करें ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं और कहां से हैं। और यहां एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैडम जी हमारा क्या हमसे क्या नाराज़गी है, मेरा कल भी नहीं मैसेज पढ़ा गया था और आज क्या क्या होता है, आप लोगों का मर्जी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहां सभी के मैसेज पढ़े जा रहे हैं और कल बीच में ही नेट काम करना बंद कर दिया था जिसके कारण मुझे शो को स्थगित करना पड़ा था और इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं पढ़ पाई थी। और आज पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी के मैसेज पढूं और सभी के गाने प्ले करूं। और इसी के साथ हमारे पास यहां अगला मैसेज पहुंचा हुआ है अनूप कुमार खरवरा से और लिख रहे हैं, मेरा गाना भी बजा दीजिए। और गाने के बोल हैं, वादा ना तोड़ वादा ना तोड़। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और प्ले करते हैं इनके गाने को और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना अनूप जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग वादा ना तोड़, और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गाना मेरा बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपका भी सॉन्ग बजेगा, थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, मैं संजीत कुमार बिशनपुरा बाज़ार से, मेरा भी एक फरमाइश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सोनी मैम नमस्कार, राधे राधे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ, और नाम है सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया से, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बोल हैं तो चलो बॉर्डर मूवी का सॉन्ग बजा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बॉर्डर मूवी का सॉन्ग प्ले करते हैं, तो चलो, और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
0: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। हम वो हैं जो रेडियो रिमझिम की महफिल गुलजार रखते हैं। यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय डियर भारती जी, प्यार भरा नमस्कार, कैसी हैं? मेरे तरफ से सभी को सलाम, बोलिएगा मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान शारजहाँ सिटी UAE दुबई से, नमस्कार न। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इन्हें गाना सुनना है, और ये लिख रहे हैं, तुम मेरे हो या नहीं पर तुम्हें अपना कहना अच्छा लगता है, ना हक है ना कोई रिश्ता, फिर भी तुम्हारी रेडियो पर परवाह करना अच्छा लगता है। जुल्फ बनकर बिखर गया मौसम, धूप को छांव कर गया मौसम, तितलियां बन के उड़ गई रातें मेरी, नींद को ख्वाब कर गया मौसम। और बहुत ही खूबसूरत शायरी। और आपके शो में पहली बार SMS किए हैं भारती जी, प्लीज़ मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं, दिल की धड़कनों को जब थाम लेते हैं कोई, ख्यालों में अपने जब नाम लेते हैं कोई, तब यादें और भी यादगार बन जाती हैं यारों, जब हमें हमसे भी ज़्यादा जान लेते हैं कोई। आपकी आवाज़ काफ़ी लाजवाब है भारती जी, जिसकी जितनी तारीफ़ करे कम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनी बहन क्या कर रही हैं, उनको मेरा नमस्कार बोलिएगा। तो जी, आपकी तरफ से उनको मैंने नमस्कार बोल दिया है। और लिख रहे हैं, हम वो हैं जो रेडियो रिमझिम की महफिल में गुलजार रखते हैं, और हालात चाहे जो भी हो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रखते हैं। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। लिख रहे हैं, गाने के बोल हैं, मैं चाहूं तुझे कि कोई किसी को ना चाहे। ओह, तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं आगे और एंजॉय करते हैं इस गाने को।

और सुनवाना चाहते हैं शिल्पी निशा भारती, रुखसार खातून, आयशा खातून, सगुफ्ता, फिर दोस फिरदौस शिल्पी, सुधा भारती, हजार खातून, हजरा खातून और अनिल भाई को।

और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग भारती जी, कैसी हो मैडम? तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं भारती जी, कल से मैसेज कर रहा हूँ। और मैसेज करने वाले हैं मुन्ना कुमार मोतिहारी ज़िला से। मैम आज मेरा नंबर आ जाएगा कि नहीं? तो जी बिल्कुल, चलिए मैं आपका गाना प्ले करने जा रही हूँ। और आप गाने के बोल है बलमा बड़ा नदान बा। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनके साथ।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए चलते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है। जो कि लिख रहे हैं भारती जी, गुड आफ्टरनून, हम श्री राम सासाराम दिल्ली से जुड़ गए हैं और मेरे गाने की फरमाइश है। और गाने के बोल हैं भाग गई बुढ़िया आनंद मोहन जी की आवाज़ में। तो चलिए श्री राम जी की गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनके साथ इस खूबसूरत से गाने को।

हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत भाग गए बढ़िया श्री राम जी की तरफ से। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश कुमार मिश्रा जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, लिख रहे हैं, खुशियों से नाराज है मेरी ज़िंदगी, बस प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी, हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वैसे तो दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। क्या बात है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, मैं राजेश कुमार सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इन्हें गाना सुनना है जो कि लिंक के द्वारा गाना पहुंचा हुआ है। और गाने के बोल हैं प्यार केकरों से ना करी हो। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं राजेश जी के साथ इस गाने को।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है पंकज जी का, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं राम राम भारती जी, मैं मैम केम छू, तो मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं मेरे गांव में एक लड़का है, उसका नाम गुलशन है। मैंने पूछा उससे कि क्या तुम्हें पता है गुलशन, तो बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे नाइस सॉन्ग, बिल्कुल। कल तो मेरा भी नेट नहीं, दिन भर गायब था, तो नहीं मेरे यहाँ तो 4 बजे के बाद आ ही गया था। और लिख रहे हैं सीट खाली बाका मैम, तो जी बिल्कुल सीट खाली है। और इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: हम रामेश प्रसाद बोल रहे हैं।
11: हाँ जी,
12: आज हवा खूब बहुत खूब बने, अच्छा दिन भर बा।
11: आज तो मौसम बहुत अच्छा भइल बा।
12: तो गाना सुना दी,
11: बता दी।
12: लाली लाली उठवा से बोलते लाल लैया हो की रसा चुवेला।
11: और गाना क्यों के सुना हो के बा?
12: आई बारे एगो लक्षण भाई चप्पल बिगड़ल बनावे लन, आई बारे तो पासी हो बंदाई कारी उतार के बिना पानी मिलो ना बेचला ना हम बनी रवा बनी।
11: अच्छा चलिए, और गाना प्ले कर दिल बनी, गाना की एंजॉय करी, और रेडियो रिमझिम में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

लाल लाल होठवा से बड़ से ललैया, और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, अच्छा गाना बा मैम। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु निंक वाले, एमपी नमस्ते, मैम कैसे हो? तो मैं तो अच्छी हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ लिख रहे हैं पंकज जी, ओल्ड इज गोल्ड भोजपुरी, बहुत निक गीत। और यहाँ सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं, मैं हमार मैसेज और खोइंचा में बांध दे लेवानी का, तो ना रारू मैसेज तो शामिल करनी है, रोवा ध्यान ना देनी है। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, हम हाय मैम, संजीत कुमार विशुनपुरा बाजार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। तो चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं इनके पसंद के गाने को, और सुनते हैं सभी के साथ, और इन्जॉय करते हैं इस गाने को।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन, प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज सिमरन प्लीज।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है कार्यक्रम का। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, और मुझे एक गाना सुनना था। हम बानी परदेश में घर में रोवत हुई हैं जान, और डेडिकेट है मंटू यादव गुड्डू गुप्ता को। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरेराज बाबा के नगरी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं और कितना इंतज़ार करे के पड़ी, तो चली रहा और इंतज़ार कर देनी हम ख़त्म और रोवा गाना के प्ले कर देनी। तो चलिए अपना गाना के एंजॉय करी सभी के साथ।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं संजय कुमार वैशाली जिला से।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गाना मनोज तिवारी की आवाज़ में, हम बानी परदेश में और रोत हुई हैं घर में जान। तो इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम समीर आलम, जंगलिया से सॉन्ग सुनना है तो तू मेरी ज़िंदगी है, और डेडिकेट आपको और सुनने वाले सभी को भी है। तो चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं समीर जी के गाने को, और इन्जॉय करते हैं इनके साथ।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9895

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है। चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए। ना ना ऐसे कोनो बात नहीं है, फोन भी उठावल जाता और मैसेज भी शामिल कर जाता। ना ना रोवा से हमार कौन दुश्मनी हो सकता। हाँ हाँ और सब ठीक बाबे। ना ना और कॉल उठा ले बनी, बताएं कौन सा गाना सुने आज। राउर आवाज कट कट क्या होता है, एक बार और ही बता दें।
1: तो
0: साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और गाना क्योंकि डेडिकेट भी बा। तो चली रहा और गाना प्ले कर दे बनी, एंजॉय करी गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। बाय।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा संग, और साथ ही तेरे बिना भी क्या जीना। और इसी गाने के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है पंकज जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, भारती जी दुश्मनी निभाओ तनी, बांगर वाला एक कटहल लिख दी भारती जी के। अच्छा जी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से, और लिख रहे हैं, उल्टी पड़ती है रेत पर सब कश्तियाँ मेरी, कोई ले गया है दिल से, कोई ले गया है दिल से समंदर निकाल कर। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते जी, हम भी आ गए जी, मेरा भी गाना है मैम, और गाने के बोल हैं कमरिया गोले गोले वाला। अच्छा, और मैम हम भी हैं, और मैसेज करने वाले हैं कपिल विश्वकर्मा कोटा राजस्थान से। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे, मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़, भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ मैसेज तो करने वाले का नाम नहीं दिख रहा है, और मैं कह रही हूँ सभी से कि अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। और ये लिख रहे हैं बहुत मस्त गाना, तो जी गाना तो बहुत ही शानदार था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है रहीम जी की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हम भी लाइन में हैं, तो जी बिल्कुल आप भी हैं। और यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं 3 दिन बारिश में भीगने के बाद छाता खरीदा, 3 दिन बारिश में भीगने के बाद छाता खरीद कर लाया, अब ससुरी बारिश ही बंद हो गई। और इसी गाने इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और यहाँ हमारे पास पहुँचा हुआ है मैसेज जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैम, हम भी जुड़ गए हैं। और लिख रहे हैं मेरा नाम रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं सॉन्ग फरमाइश भेजे हैं मैम, तो जी बिल्कुल आपकी फरमाइश आ चुकी है। और फिल्म का नाम है शान, और गाने के बोल हैं प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से मरते हैं शान से। तो चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं गाने को और इन्जॉय करते हैं इनके साथ।

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना हम लोगों ने, प्यार करने वाले करते हैं शान से। और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, श्री राम भाई को नमस्कार बोल दीजिएगा और बोलिएगा बुढ़ियो भागल ने की अपने नैहर गई होंगी। दिलीप राम मैसेज करने वाले हैं, दिलीप राम। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा गाना नहीं बजाना है तो बता दीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, यार हमसे कोई दुश्मनी है क्या? तो नहीं, मैं आप सभी को बता दूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मैं सबका गाना एक एक करके प्ले कर रही हूं। और अधिकतर लोगों का जो कि कल का सोनी जी गाना बजा चुकी हैं और फिर से आज हमसे कह रहे हैं गाना बजाने के लिए, तो आप सभी को बता दूं कि शायद एक हफ्ते में गाना प्ले होता है सभी का। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अपनी बारी का इंतज़ार करें। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्ते मैम, का हाल बा, मैं साकिब बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप अपना बताइए। और लिख रहे हैं, मैम मेरा भी गाने का ख्याल रखिए। तो जी बिल्कुल। और लिख रहे हैं, मैम मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए होने नहीं दूंगा, जब तक मैं अपना गाना नहीं सुनूंगा मैसेज पे मैसेज करता रहूंगा। मैं साकिर जम्मू और कश्मीर से रहने वाला बिहार का, मेरा गाना है कितना हसीन चेहरा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं आपके गाने को सभी के साथ।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हाय मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, लो जी भारती जी को अनिल कुमार का नमस्ते, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हम दरभंगा से, हमारा भी गाना सुना दीजिए। तो जी बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिलीप जी, श्री राम जी सासाराम से, और मैसेज है, लिख रहे हैं, गुप्ता जी ने SBI बैंक में खाता खुलवाया, और गुप्ता जी का पूरा नाम राज गुप्ता, और पासबुक में गुप्ता जी का पूरा नाम राज गुप्ता और पासबुक में प्रिंट होकर आया राज गुप्ता। और गुप्ता जी ने बैंक मैनेजर को बताया कि सर, राज और गुप्ता के बीच में स्थान रखना है। एक हफ्ते बाद पासबुक आई जिसमें नाम था राजस्थान गुप्ता। और ये लिख रहे हैं, दिलीप जी को भेजे नमस्कार बा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सोनी जी का हाल कहाँ है, सोनी जी भी इधर ही हैं और वो भी आप सभी से जुड़ेंगी, लेकिन अभी नहीं, दोपहर न्यूज़ के बाद। और हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है विपुल सिंह जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना और गाने के बोल हैं, हो गई नहीं कंगाल माल के चक्कर में, और नील कमल जी की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं विपुल जी के गाने को सभी के साथ।

और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गाना चल रहा था बलमा बड़ा नादान, पहले पंकज भाई शादी से पहले नादान थे, मुझे लगता है पहले वाला चुड़ैल याद आ रही है, लग रहा है पहले वाला चुड़ैल याद आ रही होगी।

लिख रहे हैं कहीं बादाम खा लिए नहीं पंकज जी, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं,

तो आन बान शान को जाने के लिए सिर्फ प्यार ही करनी है या शादी भी? नाइस सॉन्ग। वाह श्री राम जी, भाभी जी के, भाभी जी के नैहर गैला पे इतना खुशी। और यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है सागिर आलम अंसारी जी की तरफ से, जो कि मैसेज जो कि तेजपुर असम के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं मुझे एक गाना सुनना है और गाने के बोल हैं अखियां मिला के जिया भरमा के। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सागर जी के साथ।

0: और समय हो गया है दोपहर न्यूज़ का, तो चलिए बढ़ते हैं दोपहर न्यूज़ की तरफ। और दोपहर न्यूज़ के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी।
1: Red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल

0: इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई।

0: हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चार धाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजी सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, 2:35 हो चुके हैं शुरू घड़ी में, और कार्यक्रम है हम सभी का पसंदीदा शो योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है और फरमाइशें भी है, तो मैसेज और फरमाइशों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करिए आप सभी एक मेरे पसंद का गाना रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, उसके बाद हम प्ले करते हैं आपकी फरमाइशों को।

0: वेलकम बैक रेडियो डम्स 90.4 एफएम पे, आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो कभी काफ़ी सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि धान की रोपनी हो गई मैम। जी हाँ बिल्कुल, धान की रोपनी हो गई। और रेडियो फैन पंकज जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और शाहजहाँ है विलेज मुगल विरेचा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, धनेश मिश्रा जी हैं, और यहाँ जहूर आलम अंसारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास वॉइस के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। गोपाल राय जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आपकी गाने की फरमाइश है प्ले कर रहे हैं, पहले वॉइस सुनते हैं।
1: हेलो सुनी जी, कैसे हैं? हाँ मैं तो आज एक तो गाना सुनना चाहती हूँ, तो इनकलाब मूवी का गाना, किशोर और आशा भोसले की गाने का बोल है बिच्छू लड़ गया रे बाबा, बिच्छू लड़ गया, वो गाना भी सुना दीजिएगा।

और यहाँ कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून और बेसब्री से इंतजार रहा ला। तो चलिए इंतजार खत्म भइल, हम भी जुड़ चुके हैं। अल्बानी मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमार गाना बाजी की ना बाजी। तो हम राउर गाना के बात करी तो राउर गाना फरमाइश आज ना प्ले हुई, क्या है कि राउर गाने के फरमाइश हम सैटरडे के प्ले कर ले रनी। और धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे गोपाल रोजी की फरमाइश थी नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से और गाना इन्होंने सुन लिया। और आगे हाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि 25 साल पहले लोगों को खूब डंक मार रही थी बिच्छू और अभी पक्का का घर नहीं हुआ करता था। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी हमारे गांव में कहीं कहीं दिख जाती है बिच्छू लेकिन डंक नहीं मारती। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आप सबकी फरमाइश है, देखते हैं अब जिनकी भी फरमाइश बची हुई है। समय तो काफ़ी कम है मेरे पास लेकिन पूरी कोशिश है कि हम आप सबकी फरमाइश जो है प्ले करके जाएं। और यहाँ अगला फरमाइश जो हमारे पास है मध्य प्रदेश बालाघाट से राम कुमार जी जुड़े हुए और गाना सुनना है कब आएगा मेरा बंजारे। तो एंजॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर गाना प्ले कर दिया आपका।

और यहाँ अरशाद जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, ये लिख रहे हैं कि मैं मेरा भी गाना सुनवा दीजिए बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आप बिच्छू समझदार हो गया है मैडम जी। जी हाँ बिल्कुल, अभी के बिच्छू सब समझदार हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है। यहाँ लिख रहे हैं कि हाँ बिच्छू से ज़्यादा इंसानों में जहर हो गया है, इसलिए जी हाँ बिल्कुल।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश पहुंची है मध्य प्रदेश से राम कुमार जी की। और बिना देरी यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करेंगे। अगला फरमाइश जो हमारे पास है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: भारती जी, गाना आपने शुरू से नहीं चलाया, कोई बात नहीं, गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज सर को भी नमस्कार बा मेरा। और भागी नहीं है,
0: आप सभी और यहाँ कई सारे मैसेज मैं देख रही हूँ, गाने की फरमाइश डबल डबल आ रही है। और जिनका फरमाइश कल प्ले हुआ है वो लोग भी आज फरमाइश किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करिए आप लोग। और ऐसा नहीं सोचिए कि मैं सो कर रही हूँ तो भारती जी को पता नहीं है कि किनका किनका गाना चला है, क्योंकि मैं उनको पहले ही बता के भेजी थी। और यहाँ अभी भी कई सारे फरमाइश मेरे पास डबल पहुँचे हुए हैं, जो कि सुबह में एक बार का चल चुका है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव जी दुबई से जुड़ चुके हैं, क्या हालचाल है मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम एक बार ठीक से चेक कीजिए, मेरा मंडे को एक हफ्ता पूरा होता है, सैटरडे को कैसे बज ओहो जी हाँ बिल्कुल मंडे को एक सप्ताह पूरा होता है, लेकिन मुझे यहाँ सैटरडे को दिख रहा है आपका गाना शायद प्ले हुआ है। रुकिए एक बार मैं फिर से चेक करके आपको बताती हूँ दिनेश जी, थोड़ा इंतज़ार करिए। अगर गाने की फरमाइश है तो भेज दीजिए, अगर एक सप्ताह हो गया होगा तो प्ले करेंगे। और मुझे चेक करना पड़ेगा जाके कि आपका एक सप्ताह हुआ है कि नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है हम सैटरडे को आपका गाना प्ले किए थे। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल से नमस्ते, मुझे भी गाना सुनना है निरहुआ रिक्शा वाला कर। और गाना है प्यार में लोगोआ बीमार का है वाला। संतोष कुमार जी हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और गाने की फरमाइश है तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। प्यार में लोगोआ बीमार का है होला।

अरे हाँ, रेडियो फैन पंकज जी का कहना है कि सोनी मैम बादाम कम खाइए और भारती जी को भी कम खिलाइए, इससे सुनने वालों को फायदा होगा। जी हाँ बिल्कुल, सुनने वालों को तो फायदा होगा और जिनका गाना प्ले होगा उनका रोज होगा और जिनका नहीं होगा उनका कभी नहीं होगा, ये भी होगा। तो फिर फायदा के साथ साथ नुकसान भी होगा सुनने वालों को। और फिलहाल बादाम की बात रही तो मुझे बादाम बिल्कुल

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
4: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: वेलकम बैक रेडियो टूरिज्म 90.4 FM पर आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 2:58 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि एंट्री मरले बानी। और सोनी जी गुड आफ्टरनून, कैसन बानी? बड़ा लेट एंट्री मरले बानी? तो बिल्कुल बढ़िया बानी, रउआ बताई कैसन बानी। और प्रेम अदेशिया जी हैं पुराना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ जहूर आलम अंसारी जी हैं क्वेत से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ दिलीप राम जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि संतोष भाई प्यार में पागल काहे हो खेलन। देखिए आज तक पंकज भाई शादी नहीं किए हैं, इसी चक्कर में गाना सुपर था। दिलीप राम जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम हम भी जुड़ गए हैं। और यहाँ लिख रहे हैं कि आरजे पंकज सर जी को अभी के जो हालत, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं। और अगली फरमाइश जो है शाहजहाँ जी की मुगल बरेचा से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो शाहजहाँ जी

और गाने की जो फरमाइश है एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा गाना सुना। और आगे लिखते हैं कि वेरी खूबसूरत सॉन्ग, और आप कभी प्यार में आप लोग कभी प्यार में बीमार हुए हैं क्या? तो ये जो भी हुआ होगा वो बताएगा तो नहीं। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भारती जी को समझ में नहीं आता है किसी के डेली गाने बज जाता है और किसी का एक भी दिन नहीं बसता है। जी हाँ बिल्कुल। और धनेश जी आपका एक सप्ताह हो गया है और आप अपने गाने की फरमाइश जो है हमें भेज सकते हैं। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा गाना सुनवा दीजिए। और आगे लिखते हैं कि इन हवाओं को कह दो जरा औकात में रहे, तार हिल जाने से हमारे गांव की बिजली चली जाती है। नमस्ते, क्या हाल है और गाना सुना दीजिए। आएगा मज़ा बरसात का। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम तो मैंने सुनी है, अमरजीत शुक्ला जी और उज्जवलिया के रहने वाले हैं। तो चलिए अमरजीत जी, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। अब आएगा मज़ा बरसात का।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे अखिया मिला के अखिया से, और गाने की फरमाइश के साथ यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस मैम, नाइस सॉन्ग मैम, और मैम आती है तो सो अच्छा चलता है, रेडियो अच्छा बजता है, और गाने की मैसेज करने वाले हैं संजय जी दुबई से, और यहाँ दिनेश जी है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम धीरे धीरे मैं रेडियो सुनना कम कर दिया है क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी। और किस बात की आदत डालनी पड़ेगी बताइएगा। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा रिक्वेस्ट गाना नहीं था, आप जो गाना सुनाए भाई, आप जो गाने के नाम बताए वही गाना था। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हवाओं से कह दो औकात में रहे, हवा चलती है तो मेरे घर की बिजली चली जाती है, वायुदेव जी से, और वायुदेव जी हैं बालक, पहले बिजली मिस्त्री को बुलाकर अपने पोल का टोका टाइट करवाओ, मेरी हवाओं को बदनाम मत करो। जी हाँ बिल्कुल, और सही कहा आपने, रेडियो फैन पंकज जी है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इस गाने में चार चांद लगा दिया, धन्यवाद गाना बजाने के लिए और गाने के साथ गुनगुनाने के लिए। और मैसेज के साथ है अमरजीत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी कल से मैसेज कर रहा हूँ और जवाब कोई नहीं दे रहा। ओहो हो, कोई बात नहीं, आज जवाब मिल जाएगा आपको। और इरशाद जी है धनाव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ अगली फरमाइश जो है हमारे पास, रेडियो फैन पंकज जी का वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: नमस्कार,

0: और हाँ, गाना है इनकी तरफ से, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को, प्ले कर दिया है रेडियो फैन पंकज जी की फरमाइश, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। और फिलहाल वॉइस सुनते हैं इनकी तरफ से जो पहुंचा हुआ है।
1: हम रेडियो फैन पंकज अपन घर से अब घर कहाँ बा, बस जमीने बा, का हाल बार हुआ सब एक उम्मीद है कि एकदम मस्त बिंदास हो खम। और मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा बाटे, आज तो हल्का धूप निकल बा, आगे चले कहीं बदरी घेरे या बारिश आवे, कल तो दिन भर बारिश हो बाटे। तो चल उम्मीद बा कि रिवो सब बारिश का एकदम लुप्त उठैले हो खम, मान कि बारिश होखे और साथ में रेडियो होखे, रेडियो के साथ में खाए वाला कुछ सामान आवत रहे, पकौड़ा पकौड़ी है तो फिर बारिश के जन मजा बटे डबल का तीन गुना बढ़ जाला। चलिए आज गाना का रिक्वेस्ट बटे, और गाना का रिक्वेस्ट रही हमके कौन सा गाना, खुदगर्ज फिल्म से, खुदगर्ज फिल्म बटे, खुदगर्ज या खुददार, ना ना खुददार, हाँ खुददार फिल्म के नाम बा, और गाना के बोल बा,
2: तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
1: तो ये गाना सुनने के बाद और हम जान कि हमने के कुछ रेडियो दोस्त बानी, रेडियो मित्र बानी, और राघव जी, ओम साइन टेलर्स राघव जी, बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज, सोनिक रजन कुशवाहा मुकुंदिया गोपालगंज आउट ऑफ इंडिया, और विवेक गुप्ता माझा न्यू मार्केट गोपालगंज, दीपक कुमार गुप्ता चौराम होटल गोपालगंज, और नीरज भाई उर्फ राजा साहबजवा गोपालगंज, और उपेंद्र यादव जी साहबजवा गोपालगंज, राम कुमार पांडे जी लकलू वाले, हाँ लंदन से, हाँ पूरा का पूरा यहाँ के अंग्रेज बन गए बनी और साथ में प्रेम और प्रेम मधेसिया जी, अनिल मधेसिया जी पटरवना कुशीनगर रूपी से, और के बाद और भी हमारा नाम से जाने पहचाने वाला जितना भी सोता बानी उस सब तमाम रेडियो दोस्तों के बस नाम जितना हो सके हम ले लें, लेकिन नाम जो नहीं ले लें वो तमाम दोस्त लोग गाना के सुन सकेला और इंजॉय कर सकेला। बाकी ये कम सुनत रहें और झूमत रहें, बाय बाय एंड जय हिंद।
0: तो चलिए पंकज जी और गाने के फरमाइश जनवा प्ले कर दिले बानी, इंजॉय करी तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

संजय जी हैं लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग पंकज जी, बहुत सारे मैसेज हैं लिख रहे हैं मस्त जकास गाना एंजॉय करिए। और पंकज जी की तरफ से भी मैसेज है लिख रहे हैं कि शुक्रिया सोनी मैम और डबल शुक्रिया गुनगुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

और ये काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश करने वाले हैं रेडियो फैन पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद फरमाइश करने के लिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैडम से हम भी जुड़ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साकिब जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विजय कुमार कुशवाहा जुड़ चुके हैं रसिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरे तरफ से पंकज सर जी को नमस्कार बोल दीजिए सोनी मैम। बिल्कुल बोल दिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं चंपारण से संतोष कुमार जी। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं कि आप रहती हैं तो सो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। और मैसेज करने वाले हैं अमरजीत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। पंकज सर जी को बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और शाज जी हैं धनाव से। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सभी दोस्तों को नमस्कार, रेडियो रिमझिम में हम भी जुड़ गए हैं। अजय कुमार सैनी यूपी कुशीनगर से, मैडम जी हमको भी गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में, चार दिन से पियोवा बाना ना पाता दरोगा जी। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो पहुँची हमारे पास, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ मैसेज है, और अगली फरमाइश करने वाले हैं केतन खरे जी, महाराष्ट्र नासिक से बोल रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाना सुनना है सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, एंजॉय करिए, गाने को प्ले कर दिए हैं।

और यहाँ आरजे अमन जी लिख रहे हैं, गुरु जी को मेरा भी प्रणाम है। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग दीवाना का, सभी दोस्तों को शुक्रिया और नमस्कार। रेडियो फैन पंकज जी हैं, और जी हाँ बिल्कुल, ऋषा जी आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है।

मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्रणाम अमन सर जी का हलवा बॉस। और रेड फैन पंकज जी है, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैंने सोच लिया है कि सिर्फ तुमको ही प्यार। चलिए बढ़िया है, एंजॉय करिए।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 3:24 हो चुके हैं शूटिंग घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास है। मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर साबलनिया जी, सविती साबलनिया, सुमन साबलनिया, बेटी अंशु रानी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सुनकर हम मैसेज कर दिए। और आगे यहाँ मैसेज है, रसिया से मैसेज किए हैं विजय कुशवाहा जी हैं और लिख रहे हैं कि 4 दिन से पियावा बना पाता गाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैम जी हाँ बिल्कुल, आपकी फरमाइश है और यहाँ फरमाइश जो पहुँचा हुआ है प्ले करेंगे, नेक्स्ट गाना है ये। और अभी जो हम अपनी फरमाइश यहाँ अगली फरमाइश प्ले करेंगे, कॉल के माध्यम से कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए पहले बात करते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
4: नमस्ते
3: जी। नमस्ते, अनिल बात कर रहे हैं
4: जी। अनिल बात कर रहे हैं।
3: अरे यार आप तो गायब ही हो गए हैं, शो से कहाँ गए हैं आप?
4: अरे घर पे ही हैं, फोन खराब हो गया है। ठीक है, तो कल भी ट्राई कर रहे थे, मतलब अंदाज पे ही कि हो सकता है कि इस टाइम गाना नहीं चल रहा हो या फिर एड नहीं चल रहा हो, लेकिन तीन चार बार कॉल लगा, लेकिन अब वही है, सुन ही नहीं रहे थे, बस ऐसे अंदाजी कॉल लगा रहे।
3: अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं कि शो में आ नहीं रहा, आज तीन चार दिन से हो गया आपको सुने नहीं, है कहाँ।
4: और बहुत मतलब हम भी बहुत मिस कर रहे हैं, क्या बताएं।
3: कोई नहीं, हम भी याद कर रहे थे, देखिए याद किए तो आज आप कॉल पे मिल गए।
4: वो पता है, वो एक एक फोन में पता नहीं क्या हो गया, और दिखाए तो बोल रहा लोग कि शॉर्ट हो गया है मोबाइल, उसके बाद कॉल 11 बजे से चार्ज में लगाए हैं मोबाइल, आज अभी तक चार्ज में ही है फोन, अभी 30% चार्ज हुआ है। अब पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ है।
3: अच्छा, मतलब वो बनने वाला नहीं है अब।
4: लग तो वही रहा है, नहीं बनेगा, बनेगा भी तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो कौन बनवाएगा।
3: हाँ, उसने में तो नया आ जाएगा।
4: हाँ, नया आ जाएगा, नया ही लेना है, दो चार दिन में ले लेंगे।
3: क्या फोन लेके धान रोपने चले गए थे क्या।
4: वही
3: लग रहा है।
4: हाँ, वही खेत में थे और बस ये सुन रहे थे, रेडियो रिमझिम में सुन रहे थे उस टाइम। तो सुनते सुनते अब उसमें क्या होता है कि बदलना नहीं पड़ता है, गाना हर मूड का आता है। फिर घर पहुंचे तो चार्ज में लगाया, तो चार्ज लगाने के बाद वो जला नहीं मोबाइल, मतलब ऑन नहीं हुआ, तो शक हुआ कि लो खराब हो गया क्या, और वही हो गया।
3: चलिए कोई ना, तो गाना सुनना है, कौन सा बताइए।
4: जिंदगी इम्तिहान लेती है।
3: अच्छा,
4: ले रही है अभी थोड़ी थोड़ी।
3: जिंदगी है वो तो लेगी ही, जब जब उसको मन करेगा तब तब वो लेगा।
4: और सारे चीज मतलब HMC से लेकर ये योर वॉइस योर चॉइस, बाकी भी मतलब बहुत मिसिंग है, क्या बताएं, बहुत दुख हो रहा है।
3: कोई नहीं, मुझे तो थोड़ी सी खुशी मिली कि आप शो में जुड़े। मैं खुद सोच रही थी कि जो इंसान डेली जुड़ते हैं शो में वो कहाँ गायब हो गया अचानक से। और किसी शो में आपको सुनने नहीं मिला, SMS फरमाइश का भी रिपीट आज आके सुन रहे थे, उसमें भी आप नहीं थे।
4: हाँ।
3: तो मैं सोच रही हूँ कि भाई ऐसा क्या परेशानी आ गया कि रेडियो रिमझिम छोड़ दिया आप।
4: नहीं छोड़े नहीं है, हमारी भाई बड़ा मजा ले रही है।
3: अच्छा,
4: बोल रही है कि कि बहुत बढ़िया, अब मोबाइल नहीं खरीदेगा 15 दिन तक, तब रेडियो का नशा उतरेगा। हम बोले कि ये नशा जो है ना चढ़ गया है, ये कभी नहीं उतरेगा।
3: कोई नहीं, तो उनके फोन से सुन लीजिए।
4: तो अब तो दिन में नहीं ना सुन पाते हैं,
3: दिन में तो ड्यूटी है,
4: रात में लाइव शो नहीं है कोई।
3: चलिए कोई ना, एंजॉय करिए गाने को, अभी सुन सकते हैं ना।
4: हाँ, अभी सुन रहे हैं।
3: चलिए
4: जी,
3: प्ले कर दिए गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोबाइल गिरा है तो चोट सीधे करेजा पर लगा है। जी हाँ बिल्कुल। और लिख रहे हैं कि नाना मोबाइल जरूरी बात, जल्दी लिखल जाओ ना तो जिंदगी बेरंग लागे लागे। और बिल्कुल सही बात बटे, मोबाइल अगर आज के समय में क्योंकि पास ना रहो तो ज़िंदगी एकदम से बेरंग हो ही जाता। और मैसेज करने वाले हैं पंकज जी, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा भाई। संजय यादव जी है दुबई से, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा भी गाना है बजा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और साकिब जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साकिब जी आपकी गाने की फरमाइश जो है वो प्ले हो चुका है सुबह में, और दोबारा एक शो में गाना प्ले नहीं होता है।
1: विकी क्या हुआ?
2: वही पुराना था,

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं जो अनिल जी की फरमाइश है छोटपुर से। और यहाँ लक्ष्मण सोनी जुड़े हुए हैं सासा मुसा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है ये साहिब ठीक नहीं और गाने की फरमाइश के साथ है ईशा जी धनाव से। तो चलिए सुनते हैं, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है तो क्या कहना चाहते हैं ये।
1: सोनी जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ। आपके कार्यक्रम में फरमाइश भेज रहा हूँ, सुना दीजिएगा। और हम लोग का तरफ आज सुबह से बारिश हो रहा है और आज तो आप कार्यक्रम में देर से आई हैं, ऐसे इसीलिए गाना भेजे हैं और हम लोग सुनना चाहते हैं रोशन टेलर में। नौशाद भाई, सद्दाम भाई, शाहिद मुखिया, असलम हजाम, समीम हजाम और भी सारे साथी हैं, कादिर भाई हैं, नौशाद आलम है, इमरान भाई हैं और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को सुनवाना चाहते हैं। बजा दीजिएगा मैडम।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, हर हर महादेव सोनी जी कैसी हैं आप, और हमको भी गाना सुनना है, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, और नाम है मुन्ना ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, और निर्मला प्रजापति जुड़ चुके हैं जादवपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सुपर गाना बांटे। जी हाँ बिल्कुल। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मान के हम इजहार नहीं करते, मतलब ये नहीं कि आपका ख्याल नहीं करते, मायूसी में बीत जाते हैं वो दिन जिस दिन आप हमसे बात नहीं करते हो। और धनेश मिश्रा जी हैं, और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश जी आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि मेरा गाना नहीं चलेगा क्या मैम? बिल्कुल चलेगा आपका भी गाना। और यहाँ शाह जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनी मैडम जी, और भारती जी को बोल दीजिएगा कि मैसेज देखा कर

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, इरशाद जी की फरमाइश है और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, चार दिन से पियावाबा न पाता, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अजय कुमार सैनी जी कुशीनगर यूपी से। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रंजन 90.4 FM पर।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि निक सॉन्ग रेडियो फैन पंकज जी है। और यहाँ मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और बेसब्री था, इंतजार था, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं मैसेज बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ गणेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप।

सुझाव लिख रहे हैं कि भारती जी पंकज जी से पूछिए, बादल पर सो नहीं आ रहा, धन्यवाद। ओहो आ रहा है सो, और मैसेज के साथ है सुबोध साहू जी बेगूसराय से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पंकज भाई की सॉन्ग सुपर से ऊपर, दिलीप जी हैं, उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं भी लाइन में हूँ, तो बिल्कुल आप लाइन में हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 97 65 65 7 50।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: वेलकम बैक रेडियो रंजीम 90.4 एफएम पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और फरमाइश से भी। और यहाँ मनीर आलम अंसारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यहाँ प्रभु निगवाले जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मिस्टर कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है और भी, उमाशंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं आपके शो से, देवभूमि उत्तराखंड से। उमाशंकर सिंह जी हैं, अवंतिका सिंह हैं, अर्चित मिश्रा है रुद्रपुर देवभूमि से, बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अफ्ताब आलम है साके खास से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और यहाँ मैसेज है, सहजाद जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी बेंगलोर से। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैसेज करते करते थक चुका हूँ, सोनी जी आप तो मेरा गाना प्ले कर दीजिए। बिल्कुल, और आपका इंतजार खत्म हुआ, एंजॉय करिए अपने गाने को। मनीष रजाक जी हैं फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, प्ले कर दिए आपके गाने की फरमाइश को।

0: 104 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं मनीष जी की फरमाइश से लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद और यहाँ रोहित जी जुड़े हुए हैं देहरादून से बहुत बहुत स्वागत है आपका लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग और यहाँ अहमद अली जी है सारे अवार्ड नंबर एक से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि पंकज जी को धन्यवाद बोल दीजिएगा सोनी मैम बिल्कुल बोल दी हैं प्रेम अदेशिया जी हैं पुराना कुशनगर उत्तर प्रदेश से और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है मैम ऐसे ही गाने बजाते रहिए और प्रकाश ओम प्रकाश यादव जी हैं नारायणपुर सिवान से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी और आगे यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिख रहे हैं कि आज मेरी दीदी का बर्थडे है तो गाना प्ले कर दीजिए तो बिल्कुल वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से
1: गुड आफ्टरनून सुन के मेरे को गाना सुना है हैप्पी बर्थडे वाला मेरा बहन की आज बर्थडे है इसलिए चाचा का लड़की का बर्थडे है वही गाना सुनना है हैप्पी बर्थडे वाला टुनटुन लाल का जो नहीं गए वही सुनना है बजा दीजिए।

और गणेश जी आपकी दीदी को मेरे तरफ से भी और पूरे रेडियो रिमझिम की टीम के तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, रहें खुश रहें और इंजॉय करिए गाने को।

0: आपके भी कुछ भी चाहिए तो बोल दीजिए, बोल दीजिए आप, मैं पार्टी दे दूंगा। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो बोल दीजिए आप, अक्षरा रेडी इंजन से पूछ लीजिए, कुछ भी चाहेगा तो मुझे दे सकते हैं, आपके पास भिजवा सकते हैं।
1: फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए गणेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना कहने के लिए, और आपकी दीदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ रेडियो फैन पंकज जी है, ये भी लिख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे, और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, समय काफ़ी कम है तो बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे, और वॉइस के माध्यम से नहीं है, चलिए यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है, सगीर आलम अंसारी जुड़े हुए हैं, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को, गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया आपका।

और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास पहुँच रहे हैं कि मैं मेरा गाना नहीं बजेगा क्या। अब बताइए, मैं जब यहाँ शो में आई हूँ तो मेरे पास 50 प्लस फरमाइश है और समय सिर्फ 1.5 घंटा, और सबकी फरमाइशें प्ले करना पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ मैसेज है, आप सबकी फरमाइश है, माफ़ करिएगा। कल कोशिश रहेगी कि अगर हम आए तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है आपकी फरमाइश प्ले कर पाएँ। और यहाँ मैसेज पहुँचे हैं कि बाय बाय जी, हाँ बिल्कुल, और कल मिलते हैं, कोशिश है कि कल शो में मैं आऊँ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना तो बजा देती जी। हाँ बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश है, कोशिश तो यही थी कि अधिक से अधिक गाने प्ले कर पाए। और यहाँ शकीर जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से गाना बजाने के लिए। और फिलहाल इंजॉय करिए शकीर जी की फरमाइश को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सो सोनी मैम, बड़ा अच्छा लगा, देर से आई बट कोई ना, मज़ा आए शो में। और मिलते हैं फिर यूं ही चलते चलते, तब तक के लिए बाय बाय एंड। और जी हाँ बिल्कुल, फिर मिलेंगे, और कब मिलेंगे ये नहीं बता सकते क्योंकि अभी तय नहीं है। और इन्जॉय करिए, और इसी गाने के साथ दीजिए आज के इस शो से मुझे निकलने की इजाज़त। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्रीम 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल।

0: विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
0: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस, 89,815 रूपए, HF डीलक्स, 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स, 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R, 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: रंगदार हो बाकी हमार हो।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हां, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
5: जी मैम, नमस्कार।
4: नमस्कार,
5: कौन बोल रहे हैं? मैम
4: भारती।
5: जी मैम, कहना सुनना है।
4: आप अपना नाम बता दीजिए।
5: मैं सुजीत कुशवाहा बोल रहा हूँ कानपुर।
4: जी, तो कौन सा गाना सुनना है?
5: वो कच्चे धागे का गाना जो है, प्यार नहीं करना जानता रखता है।
4: और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
5: सभी को, सभी रेडियो सुनने वाले।
4: जी जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी सही है।
0: क्या नाम?
1: आपने इतना इतना ट्राई करने के बाद कॉल लगा, 40 बार कॉल करने के बाद लगा।
0: अच्छा, अभी तो 11
1: बहुत बिजी बिजी आ रहा था।
0: क्योंकि अभी शुरुआत हुआ ना, इस समय बहुत बिजी जाता है।
1: और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
0: और सब बढ़िया है। कौन सा गाना सुनना है?
1: कॉल कर दिए
0: जी।
1: मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चमत्कार मूवी का सॉन्ग सुनना है।
0: कौन सा?
1: प्यार मेरी तरफ से देखो प्यार हो जाता है।
0: हाँ हाँ है। और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: जी? मेरे तो पावर है, तो आपको भी सुन
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये

0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11:00 से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्ते जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है? गाने बोल याद है
5: अपने पसंद से?
4: हम अपनी पसंद से लगा दें, आप नहीं बताइएगा,
5: अपने पसंद से लगा दीजिए।
4: टैग सॉन्ग सुनना है? अच्छा
5: जी, दीदी का कौन आया?
4: नहीं अभी तो नहीं आया उनका, लेकिन वो भी कॉल करते हैं, बराबर करते हैं।
5: हम नहीं चाहे कुछ वगैरह आदमी भी सीखा हो गया, ऐसे भी सुनते हो जाते हैं काम को काफी होता
4: है। चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 92.4 FM में।
1: जी समझिए, नमस्कार दिलीप राम।
0: नमस्कार,
1: और कैसे हैं?
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: बताया तो दिलीप राम, पहले ही मिला कि नमस्कार दिलीप राम, दिल्ली से।
0: अच्छा, आवाज कट कट के आ रहा था ना, नहीं सुनाई दिया।
1: हमारे को लगता है कि आज नाशा करके दिल्ली से आई है ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बढ़िया है?
0: हाँ हाँ बढ़िया है।
1: तो कल से बारिश खत्म हुआ कि अभी बारिश हो ही रहा है?
0: अभी तो रात भर पूरे बारिश हुई है और अभी जाके थोड़ा खुला हुआ है।
1: यहाँ तो दिल्ली में इतनी जबरदस्त हिम्मत है, हम आए तो उसको बोले मैं लेके आया ही नहीं, तोड़ दिया उधर।
0: कोई नहीं, पार्सल कर देते हैं हम लोग, देखिए कितने दिनों में जाता है।
1: पार्सल कीजिए जल्दी, क्या है कि इधर भी जरूरी है थोड़ा बारिश।
0: पार्सल भी जाने में तो 4 दिन लग ही जाता है।
1: नहीं, 4 महीने अगर कीजिएगा।
0: अच्छा,
1: 48 घंटे में मिल जाएगा।
0: अच्छा जी, चलिए तो कोशिश करते हैं।
1: अभी 4 महीने अगर भेज देंगे तो जल्दी पहुँच जाएगा बारिश। ठीक है, तो ये गाना है,
0: बता दीजिए।
1: हरिहर की चुड़िया, कहना लो लिया हो, हरिहर की चुड़िया, खेसारी लाला उसका है।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो वापस सुनाएंगे हम, और उसके बाद तमाम सुनने वाले जितने रेडियो इंजन है उन सभी को।
0: चलिए फिर, ठीक है,
1: जी तो नमस्कार, मिलते हैं 12 बजे शो में।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो इंजन।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
4: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचाय कोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9790-06-575।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
15: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
16: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
15: बढ़िया है।
16: तो नाश्ता हो गया
15: है? जी अभी तो हो गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ने आया हूँ।
16: अच्छा जी, चलिए। बारिश हो रहा है क्या उधर?
15: अभी 3-4 दिन में बारिश हुआ है।
16: अच्छा
15: हाँ जी,
16: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
15: निगाहें से सुनवा देंगे, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सभी साथियों को डेडिकेटेड है।
16: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
15: हाँ जी, धन्यवाद।
16: रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे।
1: गुड मॉर्निंग राधे राधे,
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, अपना भी। चंद्रकिशोर जीवाल बोल रहा हूँ, सूरज जीवाल।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुना दीजिए। एक फिल्म का नाम है बागी और गाने की बोल है धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सॉन्ग डेडिकेट है आपको और रेडियो सुनने वाले सभी लिखने।
1: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।
0: क्या बात है मैम, मेरा एक बार में ही कॉल लग गया।
1: अच्छा, तो कॉल
0: ज्यादा ट्राई नहीं मारना पड़ा, मतलब कॉल नहीं आ रहा है क्या?
1: आ रहा है अभी तो, जस्ट कटा के आधे से।
0: मतलब कितना दिन में पहली बार हुआ है कि मेरा फर्स्ट बार कॉल लगा, मतलब एक ही बार कॉल डायरेक्ट कॉल लग गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है।
0: मुझे भी अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, एक ही बार में कॉल लग गया।
1: नहीं, कॉल तो आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, अभी आने बाकी हैं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
15: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
15: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
17: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
18: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
19: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
20: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
20: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
20: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
20: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
20: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
20: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
21: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
22: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
23: ठक ठक।
24: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
25: अच्छा मिला ही नहीं।
24: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
4: कैसी है?
3: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
4: मैं भी अच्छी हूँ।
3: तो नाश्ता हो गया आपका?
4: नाश्ता भी हो गया है, खाना भी हो गया है आपका? हुआ?
3: हाँ, मेरा भी हो गया है। चलिए सब तो बढ़िया है, दोनों हो गया।
4: और बताइए, सब कोई ठीक है ना?
3: सभी कोई ठीक है। यहाँ
4: सनी मैम नहीं आई है क्या?
3: आई है वो भी।
4: तो शो क्यों नहीं चल रहा है, बंद है रेडियो?
3: अच्छा, चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप करना होता है ना।
4: अच्छा ठीक है, गाना सुनना है।
3: बता दीजिए कौन सा।
4: कोई भी।
3: कोई भी?
4: हाँ, आज अपने पसंद से सुना दीजिए।
3: भोजपुरी में सुनिए या हिंदी में?
4: भोजपुरी।
3: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
4: हाँ, आपको और सभी को, रेडियो रंजन सुनने वाले।
3: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन।
4: थैंक यू,
3: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए।
0: राम के।
1: और कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनिएगा?
0: तो नदिया का पार गाना ही, जैसा दिशा में लेके चला रहे बतोइया, तो वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जितना मेरे सुना सब लोग का।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18-744।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 99393-65923।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, नमस्ते।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। जी कैसे हैं आप?
13: ठीक है, तो बताइए।
12: हम भी अच्छे हैं।
13: गाना ये अच्छा थी ना, खुद बरसा भीजी न जाने।
12: हाँ है
13: जी जी, ये गाना सुन रहे हैं।
12: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
13: गाना फीस।
12: अच्छा चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
13: जी नमस्ते।
12: नमस्ते।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैं मनीष राजा खाइना बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। नहीं, अभी बारिश खुला हुआ है। आप क्या हो रहा है?
1: हमारे तरफ बारिश हो रहा है।
0: अच्छा,
1: गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा।
1: दिल वाले पिक्चर का कोई भी गाना सुना।
0: आवाज आ रही है क्या पीछे से? कुछ
1: बोल रहा हूँ, दिल वाले पिक्चर का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा, नया वाला दिल वाले या फिर पुराने का?
1: पुराने वाले का।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी गाना सुने से।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको रेडियो सुनने वाले को।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबसे। रेडियो 90.4 एफएम।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो।

0: और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: Now pick it up, pick it up.
5: Hello.
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
4: Pick it up, pick it up.
5: Hello.
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
6: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: नमस्ते मैडम।
8: नमस्ते,
9: अभी हमको गाना सुनना है।
8: बता दीजिए कौन सा?
9: बरसात के मौसम, बोलिए ना
8: जी।
9: वो गाना नहीं है, वो बरसात के मौसम वो गाना हिंदी में। हाँ, वही बस गाना सुनना है हमको।
8: और गाना किसी को सुनाना भी है?
9: अभिषेक कुमार, ईश्वर प्रसाद, जनाथ मिश्री, गोलू कुमार, मोहित कुमार, बस नहीं।
8: और आपका नाम?
9: महंत कुमार।
8: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
9: नमस्कार।
8: नमस्कार।

0: हेलो
1: मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: हाँ बोलिए,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया है, खाना खा रहे हैं अभी।
0: अच्छा,
1: आइए आप खाना खाइए।
0: नहीं, हम तो खा के आए हैं, फिर कभी खा लेंगे। तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: आज मैं वो सुनूंगी गाना जो अभी सावन का महीना लगने वाला है ना। तो मैं उस हिसाब से वो गाना सुनूंगी, आय हाय ये मजबूरी ये मौसम और दूरी ये दूरी।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, मेरे पति को।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, मेरी साहू जी को।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86-164।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 91.4 FM में।
8: नमस्ते।
7: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
8: साहिल अंसारी।
7: जी,
8: साहिल अंसारी।
7: अच्छा, कैसे हैं आप?
8: ठीक है। खाना हो गया?
7: हाँ, मेरा हो गया। आपका?
8: हम सही हो गया। आपका क्या नाम है?
7: मेरा नाम भारती है।
8: तो गाना बजा दीजिए।
7: बता दीजिए कौन सा? बता दीजिए कौन सा गाना?
8: गाना सुना दीजिए।
7: बता दीजिए कौन सा?
8: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग।
7: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग। गाने के कुछ बोल याद है आपको? न्यू सॉन्ग में तो बहुत सारे सॉन्ग निकले हुए हैं उनका भी।
8: तो भारत वारी तो बजा दीजिए।
7: बता दीजिए गाने के, अगर बोल याद हो तो, नहीं तो कोई भी।
8: हाँ।
7: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
8: आपको? और मेरे बहन दुख सर को, मेरे भाई को, रेडियो रेडियो परिवार को।
7: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4। कल या परसों?

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते भारती जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के 90.2 एफएम में। जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपने बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: फिल्म का नाम है सनम देओल
0: और गाने के बोल
1: चूरी मजा न देगा कंगन मजा तेरे जगह सारे।
0: सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: गुड्डू है, विकास है, पूरी गुड़िया सीमा है, हाथ है आपका चीन है।
0: जी चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, मैं राजेश साहु, मधुसूदनगर, जिला गुना से।
6: जी कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, वही सुन रहे हैं और मटिया दुकान पर बैठे हैं।
6: अच्छा
5: जी,
6: तो आज कौन सा गाना सुनना है?
5: जी मैडम जी, चरणा में जय विक्रांता।
6: और सॉन्ग?
5: और सॉन्ग है कोटे ऊपर कोटरी में, उस पर रेल चला दूंगी।
6: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट है?
5: जी सबसे पहले आपको है, गजराज सिंह लोधी जी है, गोपाल ओझा जी का गुपासा से है। जी
6: और सब ठीक है ना?
5: ठीक है, हमारे यहाँ सब ऊपर लगी है आपके यहाँ।
6: क्या हो रहा है?
5: बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है आपके यहाँ?
6: नहीं, मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, रात को हो रहा था बस।
5: हमारे यहाँ तो 8-10 दिन से पानी नहीं गिरा था, गर्मी से बेहाल है और फसल भी मुरझा रही जा रही है। पानी के लिए अगर 2-4 दिन और पानी नहीं मिलेगा तो फसल चली जाएगी हमारी।
6: अच्छा
5: जी।
6: नहीं, ये तो मतलब बारिश घूम के चारों तरफ जा ही रहा है, देखिए आपके तरफ भी जाएगा,
5: क्या पता कब आएगा। जरूरत हमें अभी पड़ रही है पानी की।
6: होता है जब फसल की जरूरत होती है पानी की तो होता ही नहीं है, जब ना हो तब होता है।
5: जी जी जी। खाना हो गया आपका?
6: हाँ हो गया है।
5: ठीक है,
6: चलिए फिर।
5: कब आएगा बहन जी?
6: जी
5: कब आएगा मेरा ये गाना?
6: आपको ये गाना कल या परसों आएगा।
5: तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज का प्रोग्राम आज ही लाइव कर दिया जाए तो अच्छा रहता है?
6: होता है, लेकिन जब एक दिन डिले हो जाता है ना उसके बाद से, अब कॉल मान लीजिए फिर आज का रिकॉर्डिंग कर लिए तो ये तो अधिक हो ही जाएगा ना।
5: और आज कौन सी कॉल आएंगी शाम को 5 बजे से?
6: शुक्रवार को जो हुआ था ना रिकॉर्डिंग वो।
5: अच्छा,
6: क्योंकि वो अभी बजा नहीं है।
5: जी जी जी, ठीक है।
6: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हाँ जी नमस्कार, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।
0: तो मैं गाना का फरमाइश करना था, प्यार काहे को बनाया राम ने।
1: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, हमारे सभी दोस्त लोग हैं, बाबूलाल हैं, गंगा सागर हैं और सभी दोस्त हैं हमारे साथ में, ये शाम को हम लोग सुनते हैं। तो क्या ये गाना आज बज जाएगा या कल बजेगा, कुछ अनुमान बताइएगा?
1: अनुमान तो कल ही परसों का है।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: ठीक है कोई बात नहीं, कल हम लोग डेली सुनते हैं, फिर भी आज बज जाए तो चाहे कल बजे तो कोई बात नहीं है,
1: क्योंकि शुक्रवार वाला अभी कॉल बाकी है, वो बजा नहीं है।
0: अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, इस गाना को बजा दीजिएगा।
1: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: ओके धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone game bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: Hello.

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगल का।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बी

0: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

शिव जी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिव जी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिव जी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right।

0: एक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का किया आह्वान। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गरीबों पर टैक्स लगाए जाने की बात पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में आज इस संबंध में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम न फैलाए।
2: गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है।
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने राज्य में बंद चीनी मिलों को लेकर भी स्पष्ट घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन्हें पुनः चालू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। श्री चौधरी ने कहा कि गोपालगंज, सकरी और रैयाम चीनी मिल जल्द शुरू की जाएगी।
2: बंद चीनी मिलों में कई जगह पर, चाहे वो गोपालगंज में हो, सकरी हो और रैयाम, ये तीन जगह पर हम लोग अभी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आईपीएल जो भारत सरकार की संस्था है उसके साथ हम लोग एमओयू करने जा रहे हैं। तीन नए जगह पर हम लोग तुरंत चीनी मिल प्रस्तावित करके शुरू करने जा रहे हैं।
0: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और टोका टोकी के बीच सुचारू रूप से चली। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में राजद के गौतम कृष्ण के एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति लाई है, इसके तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री तिवारी ने कहा कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेज दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज विधानसभा में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को बिहार में प्रैक्टिस करने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्व प्रमाणन पत्र के आधार पर उनका राज्य में निबंधन किया जाएगा।
3: कोई भी चिकित्सक जिसका रजिस्ट्रेशन पहले किसी और राज्य में था या फिर केंद्र में है, वो आकर बिहार में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पहले करनी पड़ती थी। अब सिर्फ वो स्व प्रमाणन पत्र देंगे तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
0: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित होने से राज्य में गन्ना उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4: इस विधेयक के तहत रोजगार का सृजन होगा, गन्ना उत्पादन की वृद्धि में काफी नीति काम करेगी, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स हम लोग लाएं निवेशकों को लाने के लिए उस पर सरकार काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान श्री चौधरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संसद की कार्यवाही में भाग लिया। श्री कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 5वीं सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन SM ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि 5 जून को आयोजित परीक्षा में सभी श्रेणी के 30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस परीक्षा में 14,512 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 4,353 शिक्षक सफल हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम आवेदन संख्या की मदद से बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में सफल शिक्षकों की आगे काउंसिलिंग की जाएगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले के मनिहारी में सबसे अधिक 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के बीच राज्य के अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। इधर हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी कोरियन गांव में वज्रपात की चपेट में आने से आज एक युवक की मौत हो गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और कमला बलान समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न जिलों में निचले इलाकों में पानी फैल जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी का बहाव अभी सामान्य बना हुआ है। जिले में सभी बांध और छरकी सुरक्षित हैं। इधर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने विभागीय अधिकारियों के साथ बांधों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता साजिद इकबाल ने बताया कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
2: अभी हम लोगों का जितना भी तटबंध, सारण तटबंध जो है 80 से 152 और उसके बीच जितना संलग्न छरकी है सब सुरक्षित है। इस स्थल में कटाव निरोधक कार्य पर जो कराया गया है परकोपाइन से दीपो छरकी से लेकर महारानी छरकी तक, और आज यहाँ जो है बहुत अच्छा कारगर रहा है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज दानापुर छावनी स्थित चर्च परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर ऑपरेशन सिंदूर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। श्री हसनैन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आयोजित यह अभियान हमारे वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और उनकी राष्ट्र की सुरक्षा के संकल्प को सम्मान का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के खिलाफ फर्जी सोशल मीडिया नेटवर्क चलाने और पैसों के बल पर चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की है। पटना के दानापुर स्थित 4 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दानापुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना के बाद इन स्कूलों में जांच की गई, कहीं कोई विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया है। प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। रोहतास के 66 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान दाखिल खारिज, राशन कार्ड, शौचालय, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सर्वा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्रों को साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षा के टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 जुलाई को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और अन्य अधिकारियों ने प्रस्तावित सभास्थल नदी घाटी योजना उच्चतर विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। बेगूसराय के सिमरिया धाम में 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 इलेक्ट्रिक और लकड़ी के शवदाहगृह का निर्माण किया गया है। इन शवदाहगृहों को नगर परिषद प्रशासन को सौंप दिया गया। दरभंगा के विभिन्न शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में आज CPR जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों को हृदयघात की स्थिति में तत्काल CPR सहायता देने की तकनीकी जानकारी दी गई। सारण जिला मुख्यालय छपरा में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के सफल संचालन के लिए चार्ज अधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिनों का होगा। रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित मंडल कारा में कैदियों के लिए 4 दिवसीय वर्मी खाद उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में आज तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे।
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM Z पर।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे

0: बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक परिचालन अधिकारी, डिस्पैच अधिकारी और स्टोर कीपर। वेतनमान, आयु सीमा, योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट igrua.gov.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in। इसके अतिरिक्त भर्ती पोर्टल पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसका पता है www.recruitmentsvpuat.in। इसी संस्थान के विस्तार निदेशालय में निदेशक विस्तार और संयुक्त निदेशक का भी एक एक पद रिक्त है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता निर्देश और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट www.svpuat.edu.in। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 3 अगस्त 2026। भारत सरकार का उपक्रम FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है। उपलब्ध पद हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ, मध्य स्तरीय विशेषज्ञ और विशेषज्ञ। ये सभी विशेषज्ञ भू वैज्ञानिक अथवा भू भौतिकी विद अथवा रसायन वर्ग के विशेषज्ञ होने चाहिए, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ संपर्क वर्ग के होने चाहिए। वरिष्ठ विशेषज्ञ मध्य स्तरीय और केवल विशेषज्ञ के 10-10 पद रिक्त हैं, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ का एक पद रिक्त है। विस्तृत विज्ञापन और अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.fagmil.nic.in। मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, आवेदन प्रारूप, भर्ती के नियम और शर्तों तथा आवेदन शुल्क आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए IHBAS की वेबसाइट www.ihbas.delhi.gov.in। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2026। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक मुंबई में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.nabfid.org। इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026

0: 2020 के रोजगार समाचार पत्र में भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: देखो काजल, मेरे पास ऐसे झूठे शब्दों की चादर नहीं है जो तुम्हारी सच्चाई को छुपा सके, और मैं वो मुसाफिर हूं जिसकी ना कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी और का अपना जीवन साथी चुन लो और मुझे भूल जाओ।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर

0: मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रो रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
19: ठक ठक।
20: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
21: अच्छा मिला ही नहीं।
20: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
21: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
20: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
21: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
22: नौ
0: नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सभी प्रखंडों में पंचायतवार सहयोग

शिविर का हुआ आयोजन, वन विभाग के द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित, टीबी मरीजों को जिला पदाधिकारी ने दी पोषण की पोटली, शराब तस्करों पर की गई बड़ी कार्रवाई और कई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले के आज सभी प्रखंडों में पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में आयोजित शिविर में भाग लेकर आम जनता से संवाद किया तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने स्तर से अपने परिवार के सदस्यों की समय पर टीबी जांच अवश्य कराएं ताकि बीमारी की शीघ्र पहचान कर प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को इस अवसर का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए कहा कि महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने जीविका समूहों की भूमिका की भी सराहना करते हुए महिलाओं से अधिक संख्या में जीविका से जुड़कर स्वरोजगार एवं इससे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। शिविर के दौरान उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के समय पर पंजीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में होती है। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड से संबंधित योजनाओं के समाधान, पात्र लाभुकों के नए राशन कार्ड बनाने तथा त्रुटियों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज ने वन प्रमंडल गोपालगंज के सहयोग से मनिंद्र प्रसाद मेमोरियल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से दिघवा धाम गढ़ देवी स्थान बैकुंठपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के जेंडर स्पेशलिस्ट मुन्ना कुमार शर्मा और अनिल कुमार ठाकुर तथा वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ ओम प्रकाश ठाकुर, लेखा सहायक मुकेश कुमार शाह और स्थानीय ग्रामीण जनता मौजूद रही। विशेष रूप से ट्रस्ट के सचिव राकेश पटेल जी का सहयोग रहा। उन्होंने सभी प्रकार के पौधे और ग्रामीणों में मेक ग्रीन इंडिया का नारा देते हुए इस अभियान को पूर्ण करवाया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत भी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन की जानकारी देते हुए पात्र लाभुकों से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सहयोग शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने भी उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर आवश्यक आवेदन प्राप्त कर उसके शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने टीबी के इलाज को लेकर मरीजों को जागरूक किया है। इस दौरान मरीज को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निश्चय मित्र बनाकर मरीजों के घर जाकर पोषण की पोटली उन्हें उपलब्ध कराया। साथ ही मरीज को स्वास्थ्य, प्रोटीन युक्त आहार एवं समय से दवा लेने का भी सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी ने यह संदेश दिया कि टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले को टीबी प्रिवेंटिव दवा भी लेना अनिवार्य है। जिलाधिकारी को मरीज अपने घर पर देखते हुए काफी प्रसन्न हुए। साथ ही पोषण की पोटली पाने के बाद मरीजों ने खुशी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने 505 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक कार भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए जुड़ौना संस्कृत पब्लिक स्कूल के समीप छापेमारी की, जहां एक गाड़ी से 55 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की गई। साथ ही एक तस्कर अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी मीरगंज के सिंहा टोला के राम परीक्षण महतो का पुत्र है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरखौली पूरब टोला के पास भी छापेमारी की, जहां से एक कार पकड़ी गई। इस कार से 450 लीटर देशी

0: शराब मिली। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। इस दौरान कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कार और शराब को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कुचायकोट थाना की पुलिस ने 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक कार और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भटवा सिपाया मोड़ के पास छापेमारी की। इस दौरान एक कार और एक मोटरसाइकिल से 51 लीटर 705 मिलीलीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। इस मामले में आरोपी अभिषेक पांडे, पिता स्वर्गीय बैजनाथ पांडे, साकिन टपरी थाना हाथा जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही राजा कुमार शाह, पिता बैद्यनाथ शाह, साकिन धारोपाली थाना केसरिया जिला मोतिहारी को भी गिरफ्तार किया गया। इनके गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को भी नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नगर थाना क्षेत्र के ही रविंदर कुमार महतो है, जो हीरामन महतो का पुत्र है और सरिया वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। इस पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद पुलिस ने पगड़ा क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी कामेश्वर चौबे, जो कटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा राहुल कुमार, यह बढ़हरिया सिवान का निवासी है। इनके पास से 34 लीटर से अधिक शराब मिली है। इन दोनों को भी उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी विशंभरपुर के सल्लेपुर मटिहिनिया में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी पुरुषोत्तम यादव बताया जा रहा है, जो थावे थाना क्षेत्र के विशंभरपुर का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को उत्पाद पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसके निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रत्येक दिन काफी संख्या में फरियादी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज जिले के कई विद्यालयों में पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान साइबर अपराध से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में बच्चों को आवश्यक जानकारी दी गई। मोबाइल का इस्तेमाल करने और मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखने की जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को तेज गति से बढ़ रहे साइबर अपराध के प्रति सचेत किया गया और साइबर अपराध होने पर 1930 पर कॉल करने की भी जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी प्रखंडों में पंचायत वार सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। वन विभाग के द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। टीबी मरीजों को जिला पदाधिकारी ने दी पोषण की पोटली। शराब तस्करों पर की गई बड़ी कार्रवाई और कई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी,

0: के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
6: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: Excuse me boss, you have a text message.
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान।

0: गुप्ता ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं, उस जगह का नाम और कौन से गाने सुनने हैं उस गाने का नाम टाइप करना है और हमारे नंबर 7277165696 पे सेंड करना है। बस बशर्ते ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं यह कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए चलाए जाते हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। ऐसा ना हो कि आप अपने फरमाइश को लेकर इंतज़ार करें और हम आपके गाने ना सुनाएं नए गाने के वजह से। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ये बातें हम हर रोज़ कार्यक्रम को शुरू करते वक्त बताते हैं ताकि आप लोगों को जो भी श्रोतागण पुराने हैं तो जानते हैं, नए जुड़ना चाहते हैं और सुन रहे हैं नए, वो भी थोड़ी सी जानकारी कार्यक्रम के बारे में हासिल कर लें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे मैसेज पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हर रात एक धुन गुनगुनाती है, हर फूल से महक आती है, हमारा ख्याल आपको आए या ना आए लेकिन हमें बस वो आपकी याद आती है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दिलीप राम जी हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और हम भी शो से जुड़ गए हैं और मैं रोहित देहरादून से, और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और आपके यहाँ तो मेरे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है। आज दिन अच्छा खासा बना हुआ था और धूप निकली थी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है लैला ने कहा मजनू से, फिल्म जंगल लव। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है और हो सके तो आपके गाने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते, MD97 दरभंगा भाजीपुर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए फिल्म आंदोलन का, गाने का बोल। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और बढ़ते हैं आगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं हम गाने के साथ और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे सभी फील्ड से मैसेज किए हुए हैं कमलेश जी और गाने के फरमाइश करते हैं कमाल के, लैला ने कहा मजनू से। तो क्या कहा, चलिए सुना जाए रेडियो MGM 90.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें, या ऐसे ही 90s के गाने की फरमाइश करें तो ही आपकी फरमाइश पूरी हो पाएगी। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? मनीष राजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है के पांडे सरिया गोपालगंज से, और सोनू भाई क्या हाल चाल है? कल मेरा सॉन्ग नहीं बजा तो बिल्कुल आज बज जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल स्वागत है आपका के पांडे जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। कमाल के सॉन्ग रोशनी कुमारी मानिकपुर से जुड़ी है, स्वागत है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना का नाम है बहिया के हार ना भूला पैबू, गायक का नाम राधे श्याम रसिया, मेरा नाम है हजरत अली अंसारी घर रामपुर टिंगराही से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, मैंने में दीपक एंड जेलर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये गाने तो कल ही आपको हम सुनाए तो आज दूसरे को मौका दें, आपकी बारिश समाप्त हो गई है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाना बजाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सर जी, आपको भी धन्यवाद है कमलेश जी रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है हेलो हाय सुनो भैया जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड इवनिंग, कल मैसेज किया लेकिन मेरा गाना नहीं चलाए, तो कोई बात नहीं आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर जाएंगे, और क्या ही करें हमारे पास जितना समय मिला है उतना ही में ना कुछ करेंगे, तो आज कोशिश रहेगा जो कल के छूटे हुए मैसेज गाने के फरमाइश पूरी नहीं कर पाए हैं वो आज पूरी कर दें हम, यदि आप लोगों का मैसेज पहुंचता है तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू, आप ठीक हैं? तो बिल्कुल बढ़िया हैं, हमें क्या हुआ है, हम तो हमेशा मस्त स्वस्थ रहते हैं। और फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम तो नहीं लिखे हुए हैं, और शाहजहाँ खातून, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और अगले गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, यहाँ पे गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागढ़ हैं जिनका नाम है MD 97 दरभंगा बाजीतपुर से जुड़े हुए हैं, और गाने की फरमाइश भी कमाल के किए हुए आंदोलन से, और इन्हीं की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 94.4 FM पे सोशल लाइफ में। इस फरमाइश का और समय हो रहे हैं 9:46 और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल करेंगे। उससे पहले आप सभी के बीच फिर से हम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत छोटा सा एक सुझाव साझा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश तो हो रही है सभी तरफ, तो हम आज जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू का परिचय हम बता दें, डेंगू एक वायरल रोग है जो एडीस मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय काटता है और साफ रुके हुए पानी में पनपता है। इनके लक्षण हैं अचानक तेज बुखार 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री फ्रेंसी और तेज सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द और शरीर मांसपेशियां और जोड़ों में तेज दर्द और अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस करना, त्वचा पर लाल चटके दाने निकलना और मियाज मतली जैसा रहना, उल्टी होना, प्लेटलेट्स की संख्या में कम होना, ये सारे इनके लक्षण हैं। और इन लक्षणों में आप सभी को किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते समझना चाहिए कि डेंगू का लक्षण हमारे शरीर में आ चुके हैं। इनका उपचार है, डेंगू को कोई विशेष एंटीवायरस इलाज नहीं है। उपचार का उद्देश्य लक्षणों को नियंत्रित करना है, शरीर में पानी की कमी से बचाना है, अपर्याप्त आराम करें और अधिक मात्रा में पानी, ORS, नारियल पानी, सूप और अन्य तरल पदार्थ ले। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले और एस्पिरिन, आइब्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द निवारक दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये रक्त स्राव का खतरा बढ़ा सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं का उपयोग नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर प्लेटलेट्स और अन्य आवश्यक जांच कराएं। यदि तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून, बेहोशी जैसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। ये सारे लक्षण हैं और उपचार हैं। बचाव, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, मच्छरदानी पूरी तरह लगाएं और पूरी बाह के कपड़े और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। घर और आसपास नियमित साफ सफाई रखें। ये सारे डेंगू के लक्षण और बचाव और उपचार हैं और उपचार है। आप सभी से हर रोज़ ऐसी छोटी छोटी जानकारी सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत रेडियो रामझिम के माध्यम से हर कार्यक्रम में दी जाएगी और आप सब इसका उपयोग कर सकते हैं और करेंगे, हमें उम्मीद है। तो आगे हम बढ़ेंगे और कार्यक्रम की ओर देखेंगे, कुछ और भी मैसेज पहुंचे हुए तो उन मैसेज को भी शामिल करेंगे। आगे मैसेज पहला और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि AK पांडे जी, और AK पांडे जी आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, रिपीट मैसेज किए हुए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि उजर बबूला बिना प्योरो ना शोभे, सुरेश सा तिरबिरवा से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से बस यूँ ही सुनाते रहिए। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल सुनाते रहेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, भैया मेरा सॉन्ग क्या हुआ, तो सॉन्ग आपकी तो नहीं बजेगी क्योंकि कल ही आपकी सॉन्ग बजी है, शायद आप सुन नहीं पाए। कल आप दो दो नंबरों से मैसेज किए हुए थे और हमने आपके गाने को सुना
सुनाया और हम सभी ने सुना, शायद आप ना सुन पाए, लेकिन हम सभी तो सुन चुके हैं। सो आपकी बारी समाप्त हो गई है, तो थोड़ा सा सब्र करें। अब आगे जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जो कल के बाकी रह गए, उनकी फरमाइश भी तो सुन लेने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कल के बचे हुए हैं के पांडे जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो इन्हीं के गाने को प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं कल के। और गाने का बोल देते हैं, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। चलिए सुना जाए आपके पसंद के गाने, हम सभी सुनते हैं। 94.4 FM पे।

रेडियम जी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और ए के पांडे जी की फरमाइश, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल ये आबाद रहा। और आगे मैसेज करते हैं लिखे हुए कि के पांडे सरिया गोपालगंज से, सुनो भाई का हाल चाल है, कल वाला सॉन्ग सुना दिए आप मेरे साथ ना, अगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू कुमार यादव सॉन्ग का बोल, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, आपसे भी पहले कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो उनके भी मैसेज तो हमें देखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। कृष्ण मोहन सिंह जी सिपाया खास से किए हुए हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश है, तो चलिए इनके गाने को पूरा करते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज किए हुए हैं और इस मैसेज को पहुँचाते हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाने का बोल देते हैं थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी यही गाना सुनना है सुना दीजिए तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी

त्रिडेरमशीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। काफ़ी प्यारा शम सुन रहे थे अभी हम सभी, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। नाइस गाना निशा पांड जुड़ी है, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, आग सूरज में होती है पर जलना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहों से होती है पर तड़पना दिल को पड़ता है। सुनो भैया नमस्कार, जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिलीप राम जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइशम, ओहो तो उसको पूरा करिए नाइशम। मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू गाना बजाने के लिए भैया, आपको धन्यवाद है। और इस मैसेज को करते हैं कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से, अपने गाने को उपरांत मैसेज किए हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे है, रामपुर टिंगराही से पहुंचा है राधे श्याम रसिया जी की आवाज़ में, और गाने का बोल बहिया के हारना पैबू। तो प्ले करते हैं, हम तो गाने सुने नहीं हैं, यदि अच्छे होंगे तो आगे जारी रहेगा, नहीं तो बीच में रुकने का प्रयास करेंगे।

क्यों क्यों तोड़ दिया मेरा दिल, क्यों किया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारी जान की दुश्मन बन जाओगी। देखो, हम तुम्हारे बिना ऐसे तड़पते हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। एक ही पल में इतना बदल गए, सारी कस्में वादे सब भूल गए तुम। तुम इतनी बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, हम क्या करें गजल, क्या करें। हम प्यार में धोखा खा बैठे, ये चैनो करार गवां बैठे, अपने ही हाथों से हम खुद इस दिल में आग लगा बैठे। हम कांटों पर करवट बदलें, वो प्यार की सेज सजा बैठे। हम प्यार में धोखा खा बैठे, धोखा

रेडियो रामजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे देखे तो समय हमारा समाप्ति से कुछ आगे निकल चुके हैं, तो हम कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अंतिम गाने यही रहेगा, आधे से कुछ ज़्यादा गाने सुन चुके हैं, अभी कुछ गाने बाकी हैं, तो इसी गाने के साथ आप इंजॉय करते रहें और सुनते रहें रेडियो रामजीएम 94 एफएम। फिर कल मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।

पड़े उहो तो हाजिर बा हमार जान ले लो। मोहब्बत में भरोसा कर हम तुहार दीवाना है। अरे मोहब्बत में भरोसा कर अरे हम तुहार दीवाना है। तुहार जब दिल करे जहाँ चाहे ये रसिया के।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार. धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: रहे। और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोजी। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं। क्या बाजार को अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
1: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ही मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नजर उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
0: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
1: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड आ सकता है उस पर एक नजर है।
0: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने इस जगह पे स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
1: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूंगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नजर जरूर है और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नजरिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएं, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है।

0: और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं, और अब वो कहाँ, मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
0: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा। और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा।
1: चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र, जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट साइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई एशियाई बाजारों में, लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया पे जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
0: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं, और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना,

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: जी मैम नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: कौन बोल रहे हैं? मैम
5: भारती।
6: जी कहना सुनना है?
5: आप अपना नाम बता दीजिए।
6: मैं सुजीत कुशवाहा बोल रहा हूँ कैंपुर।
5: जी तो कौन सा गाना सुनना है?
6: वो कच्चे धागे का गाना जो है, प्यार नहीं करना जहां जा रहा है।
5: और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
6: सभी को, सभी रेडियो सुनने वाले।
5: जी जी चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
6: थैंक यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी सही है।
0: नाम
1: आपने इतना इतना ट्राई करने के बाद कॉल लगा, 40,000 कॉल करने के बाद लगा।
0: अच्छा, अभी तो 11
1: बिजी बिजी आ रहा था।
0: क्योंकि अभी शुरुआत हुआ ना, इस समय बहुत बिजी जाता है।
1: और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
0: और सब बढ़िया है। कौन सा गाना सुनना है?
1: कॉल कर दिया
0: जी।
1: मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चमत्कार मूवी का सॉन्ग सुनना है।
0: कौन सा?
1: प्यार मेरी तरफ से देखो प्यार हो जाता है।
0: हाँ हाँ है। और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: जी? मेरे तो पावर है, तो आपको भी सुन
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्ते जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है? गाने बोल याद है?
6: कोई सा याद ही अपने पसंद से।
5: हम अपनी पसंद से लगा दें? आप नहीं बताइएगा,
6: अपने पसंद से लगा दीजिए।
5: गाना सैड सॉन्ग सुनना है? अच्छा जी,
6: दीदी का कॉल आया नहीं? दीदी का कॉल, दीदी का भले
5: नहीं, अभी तो नहीं आया उनका। लेकिन वो भी कॉल करते हैं, बराबर करते हैं।
6: हम नहीं चाहे कि थोड़ा मेरे आदमी को चिंता हो गया, हेलो इसलिए इसलिए क्योंकि उनको ऐसे भी सुनते ही जाते हैं उनके लेकर काम तो काफी होता
5: है। सबसे बढ़िया है, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्कार दिलीप राम।
0: नमस्कार,
1: और कैसे हैं?
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: बताया तो दिलीप राम पहले ही मिला। नमस्कार दिलीप राम, दिल्ली से।
0: अच्छा, आवाज कट कट के आ रहा था ना, नहीं सुनाई दिया।
1: हमारे को लगता है कि आज नाशा करके दिल्ली से आई है ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब।

0: उसका है,
1: और गाना किसी को सुनाना भी है।
0: सबसे पहले तो वापस सुनाएंगे हम, और उसके बाद तमाम सुनने वाले जितने रेडियो इंजीनियर हैं उन सभी को।
1: चलिए फिर ठीक है,
0: जी तो नमस्कार, मिलते हैं 12 बजे शो में।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो इंजीनियर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
6: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया हैं। अच्छा है,
6: तो नाश्ता हो गया है?
5: जी अभी तो हो गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ने आया हूँ।
6: अच्छा
5: जी,
6: चलिए। बारिश हो रहा है क्या उधर?
5: अभी 3-4 दिन में बारिश हुआ है।
6: अच्छा
5: हाँ जी,
6: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
5: निगाहें से सुनवा देंगे, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सभी साथियों को डेडिकेटेड है।
6: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
5: हाँ जी, धन्यवाद।
6: रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम। राधे राधे।
1: गुड मॉर्निंग राधे राधे।
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है अपना भी। चंद्रकिशोर जीपाल बोल रहा हूँ, सूरज जी।
1: अच्छा।
0: सॉन्ग सुना दीजिए। एक फिल्म का नाम है बागी और गाने की बोल है धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सॉन्ग डेडिकेट है आपको और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी लिखने।
1: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।
0: क्या बात है मैम, मेरा एक बार में ही कॉल लग गया।
1: अच्छा, तो
0: आज
1: कॉल
0: आज
1: कटा
0: ज्यादा
1: हुआ?
0: ट्राई नहीं मारना पड़ा, मतलब कॉल नहीं आ रहा है क्या?
1: आ रहा है अभी तो, जस्ट कटा के आधे सेकंड।
0: अच्छा, मतलब ऐसा
1: आया
0: कितना दिन में पहली बार हुआ है कि मेरा फर्स्ट बार कॉल लगा, मतलब एक ही बार कॉल डायरेक्ट कॉल लग गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है।
0: मुझे भी अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, एक ही बार में कॉल लग गया।
1: नहीं, कॉल तो आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, अभी आने बाकी हैं।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: कैसे हैं?
5: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी अच्छी हूँ।
5: तो नाश्ता हो गया आपका?
6: नाश्ता भी हो गया है, खाना भी हो गया है आपका?
5: हाँ मेरा भी हो गया है। चलिए तब तो बढ़िया है, दोनों हो गया।
6: और बताइए, सब कोई ठीक है ना?
5: सभी कोई ठीक है। यहाँ
6: सनी मैम नहीं आई है क्या?
5: आई है वो भी।
6: तो शो क्यों नहीं चल रहा है, बंद है रेडियो?
5: अच्छा चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप करना होता है ना।
6: अच्छा ठीक है, गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा।
6: कोई भी।
5: कोई भी?
6: हाँ, आज अपने पसंद से सुना दीजिए।
5: भोजपुरी में सुनिएगा, हिंदी में?
6: भोजपुरी।
5: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
6: हाँ, और सभी को, रेडियो रिमझिम सुनने वाले।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम।
6: थैंक यू,
5: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए।
0: राम के।
1: और कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनिएगा?
0: तो नदिया का पार गाना है, जाना दिशा में जगह चला रहे बटोरिया, तो वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जितना मेरे सुना सब लोग का।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
3: बालजी सुंदर
2: जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक है, आप बताइए।
2: हम भी अच्छे हैं।
3: नहीं नहीं नहीं, ये छाती ना खोल बरसा भीजी न जाने।
2: हाँ है
3: जी जी, ये गाना सुन रहे हैं।
2: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
3: गाना सीधे।
2: अच्छा, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीत 90.4 FM।
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: नहीं, अभी बारिश खुला हुआ है। आप क्या हो रहा है?
1: हमारे तरफ बारिश हो रहा है।
0: अच्छा,
1: गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा?
1: दिल वाले पीछे का कोई भी गाना सुना।
0: आवाज आ रही है क्या पीछे से? कुछ
1: बोल रहा हूँ, दिल वाले पीछे का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा, नया वाला दिल वाले या फिर पुराने का?
1: पुराने वाले का।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी गाना सुने से।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको रेडियो सुनने वाला को।
0: चलिए फिर, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबसे। 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते।
6: अभी हमको तो गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा।
6: बरसात के मौसम बोलिए ना।
5: जी
6: हेलो, गाना नहीं है वो बरसात के मौसम, वो गाना हिंदी में। हाँ वही बस गाना सुनना है हमको।
5: और गाना किसी को सुनाना भी है।
6: अभिषेक कुमार, ईश्वर प्रसाद, जगन्नाथ मिश्री, गोलू कुमार, मोहित कुमार, बस नहीं।
5: और आपका नाम?
6: महंत कुमार।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94.4 FM में।
1: हाँ बोलिए,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया है, खाना खा रहे हैं अभी।
0: अच्छा,
1: आइए आप खाना खाइए।
0: नहीं हम तो खा के आए हैं, फिर कभी खा लेंगे। तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: आज मैं वो सुनूंगी गाना जो अभी सावन का महीना लगने वाला है ना। तो मैं उस हिसाब से वो गाना सुनूंगी, आय हाय ये मजबूरी ये मौसम और दूरी ये दूरी।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी मेरे पति को।
0: अच्छा जी,
1: हाँ मेरी साहू जी को।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते।
5: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
6: साहिल अंसारी।
5: जी,
6: साहिल अंसारी।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
6: ठीक है। खाना हो गया?
5: हाँ, मेरा हो गया। आपका?
6: हम सही हो गया। आपका क्या नाम है?
5: मेरा नाम भारती है।
6: तो गाना बजा दीजिए।
5: बता दीजिए कौन सा? बता दीजिए कौन सा गाना?
6: गाना सुना दीजिए।
5: बता दीजिए कौन सा?
6: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग।
5: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग। गाने के कुछ बोल याद है आपको? क्योंकि न्यू सॉन्ग में तो बहुत सारे सॉन्ग निकले हुए हैं उनका भी।
6: तो भारत तिवारी तो बजा दीजिए।
5: बता दीजिए गाने के, अगर बोल याद हो तो, नहीं तो कोई भी।
6: हाँ।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
6: आपको? और मेरे बहन सर को, मेरे घर को, और रेडियो रेडियो परिवार को।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। कल या परसों

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते भारती जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो किस्ते 90.2 एफएम में।
1: बंगाल बाबू
0: जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जिनका नाम है सनम देओल
0: और गाने के बोल
1: चूरी मजा न देगा कंगन मजा तेरे जगह सारे।
0: सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: गुगल है, विकास है, गुड़िया सीमा है, हाथ है या सचिन है।
0: जी चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो
1: जी नमस्कार मैडम जी। मैडम जी मैं राजेश साहू मधुसूदन नगर जिला गुना से।
2: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, रंजन सुन रहे हैं और बढ़िया दुकान पर बैठे हैं।
2: अच्छा
1: जी,
2: तो आज कौन सा गाना सुनना है?
1: जी मैडम जी, चरणा में जय विक्रांता।
2: और सॉन्ग?
1: और सॉन्ग है कोटे ऊपर कोटरी में उस पर हिल चला दूंगी।
2: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट है?
1: जी सबसे पहले आपको है, गजराज सिंह लोधी जी है, गोपाल ओझा जी ककुपासा से है। जी
2: और सब ठीक है ना?
1: ठीक है, हमारे यहाँ ऊपर लगी है आपके यहाँ।
2: क्या हो रहा है,
1: बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है आपके यहाँ?
2: नहीं मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा है, रात को हो रहा था बस।
1: हमारे यहाँ तो 8-10 दिन से पानी नहीं गिरा था, गर्मी से बेहाल है और फसल भी मुरझा रही जा रही है। पानी के लिए अगर 2-4 दिन और पानी नहीं मिलेगा तो फसल चली जाएगी हमारी।
2: अच्छा
1: जी,
2: नहीं ये तो मतलब बारिश घूम के चारों तरफ जा ही रहा है, देखिए आपके तरफ भी जाएगा,
1: क्या पता कब आएगा, जरूरी तो हमें अभी पड़ रही है पानी की।
2: होता है जब फसल की जरूरत होती है पानी की तो होता ही नहीं है, जब ना हो तब होता है।
1: जी जी जी, खाना हो गया आपका?
2: हाँ हो गया है।
1: ठीक है
2: चलिए फिर।
1: सॉन्ग कब आएगा बहन जी?
2: जी
1: कब आएगा मेरा ये गाना?
2: आपको ये गाना कल या परसों आएगा।
1: तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज का प्रोग्राम आज ही लाइव कर दिया जाए तो अच्छा रहता है?
2: होता है लेकिन जब एक दिन डिले हो जाता है ना उसके बाद से, अब कॉल मान लीजिए फिर आज का रिकॉर्डिंग कर लिए तो ये तो अधिक हो ही जाएगा ना।
1: और आज कौन सी कॉल आएंगी शाम को 5 बजे से?
2: शुक्रवार को जो हुआ था ना रिकॉर्डिंग वो।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो अभी बजा नहीं है।
1: जी जी जी, ठीक है
2: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हाँ जी नमस्कार, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा
1: हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: तो मैं गाना का फरमाइश करना था, प्यार काहे को बनाया रब राम ने।
1: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ हाँ, हमारे सभी दोस्त लोग हैं, बाबूलाल हैं, गंगा सागर हैं और सभी दोस्त हैं हमारे साथ में, ये शाम को हम लोग सुनते हैं। तो क्या ये गाना आज बज जाएगा या कल बजेगा, कुछ अनुमान बताइएगा?
1: अनुमान तो कल ही परसों का है।
0: अच्छा जी,
1: हाँ हाँ
0: ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग डेली सुनते हैं, फिर भी आज बज जाए तो चाहे कल बजे तो कोई बात नहीं है,
1: क्योंकि शुक्रवार वाला अभी कॉल बाकी है, वो बजा नहीं है।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, इस गाना को बजा दीजिएगा।
1: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: ओके ओके, धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ. और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का. यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं. तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त. मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी. सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: त्रिभुवन बिहारी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल

0: जीवन बिहारी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।